0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
1: कैसा सा हो गया है ना कि जैसे ही थर्सडे आता है हमारा बॉडी क्लॉक ऑटोमेटिकली 90s मोड में स्विच हो जाता है, क्योंकि घड़ी में देखिए जरा 11 बज चुके हैं। इसका मतलब कि अब 90s का वक्त शुरू हो चुका है, 90s वाली अंतरा का आने का टाइम हो गया है, वो आ चुकी है और हम शुरू कर चुके हैं मस्ती 90s मिक्स टेप। यस यस, ये वही वक्त है जहां पे वक्त थम सा जाता है। इन 3 घंटे के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ 90s में ऐसे गोते खा रहे होते हैं, ऐसे गोते खा रहे होते हैं कि हमें उससे बाहर निकलने का मन नहीं करता। वो शो जहां सिर्फ यादें नहीं याद करते, उन्हें दोबारा हम फील करते हैं। 90s को याद करते ही सबसे पहले जो है क्या याद आता है, अभी एकदम बात करते करते बोलूं तो एक जानी पहचानी सी खुशबू, एक पुराना गाना, वो टीवी का स्टैटिक साउंड या स्कूल कॉरिडोर का वो शोर। 90s जो है सिर्फ देखा नहीं जाता, उसको पूरा ऑब्जॉर्ब किया जाता है, और इसीलिए आई थिंक ये वाला शो जो है वो इतना पसंदीदा हो चुका है सबका। ब्राइट लंच बॉक्सेस, कॉमिक बुक के कवर्स, साइकिल पे हैंगिंग वाटर बॉटल्स, कैसेट के वो रैक्स, संडे के वो कार्टून्स, और हर चीज का एक 90s वाला टेक्सचर। आज सब कुछ इतना फास्ट है, तब इंतजार होता था मूवी जब टीवी पे आने का, एक वो जो वेट होता था कब आएगी, फेवरेट सॉन्ग रेडियो पे कब बजेगा, फोटो डेवलप होकर कब मिलेगी, सब में वेट कॉमन था। पर शायद इसी वेटिंग की वजह से एक्साइटमेंट भी कितनी ज्यादा होती थी ना। और बॉलीवुड, उफ, उनकी तो क्या ही बात करें। 90s सिनेमा रियलिस्टिक कम इमोशनल फुल पावर था। हीरो एंट्री में हवा, एकदम कंपलसरी, उसके कपड़े के साथ बाल भी उड़ रहे होते थे। रोमांटिक सॉन्ग्स में माउंटेन्स कंपलसरी, और सैड सीन्स में वायलिन का अटैक कंपलसरी। पर फिर भी हम दिल से कनेक्ट करते थे, क्योंकि उस जमाने में परफेक्शन नहीं पर्सनालिटी थी, और इसीलिए आज भी एक पुरानी सी वो धुन, एक कैंडी का वो रैपर या एक VCR का वो साउंड सीधा हमें उस दुनिया में लेकर जाता है जहां इवनिंग्स लॉन्गर लगती थी और हैप्पीनेस सिंपलर। तो बस तैयार है ना, चलते हैं 90s के उस यादों के गलियारे में, चलिए खो जाते हैं लेकिन गानों के साथ ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
1: आई एम श्योर जो बात मैं अब जो याद इनफैक्ट अब मैं ताज़ा करने वाली हूँ, हम में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ बिल्कुल एक्सपीरियंस भी की होगी और आपको अचानक से वो टिफिन का स्टील का वो टिफिन वाला डब्बा भी याद आ जाएगा। वाई? बिकॉज सम हाउ इट इज रिलेटेड। लाइक इतना ऐसा लग रहा है कि मेरे तो आंखों के सामने मेरा स्टील का डब्बा एक्चुअली में आ गया जो मैं लेके जाती थी अपने स्कूल में। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स डे। बाई 90s के स्कूल मॉर्निंग्स परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड कभी भी नहीं होते थे, एक कंट्रोल्ड केओस टाइप का हुआ करता था और उस केओस का एक परमानेंट कैरेक्टर था स्टील टिफिन का मिसिंग रबर बैंड, लाइक प्रॉपर रबर वाले बैंड, अलग अलग पिंक और ग्रीन और येलो कलर्स में जो आते थे। वो देखिए, या तो राउंड शेप का जो है स्टील का टिफिन होता था, या फिर यू नो रेक्टेंगल शेप का होता था, या फिर वो दो लेयर वाला भी आपने देखा होगा उस टाइम पे। अब ये रबर बैंड का काम ये होता था कि देखिए, मतलब मम्मियाँ तो कोशिश पूरी करती थी ठीक है कि उसमें से तेल ना लीक हो या फिर खाना ना गिर के बाहर यू नो फैल जाए, किताबें ना खराब हो जाए, तो वो रबर बैंड से उसको बांधा करती थी। पर नेचुरली सुबह स्कूल के एग्जैक्ट रश टाइम पे हमेशा वो रबर बैंड मतलब भाई खंट शुरू हो जाती थी क्योंकि वो गायब हो जाता था कि रबर बैंड नहीं मिल रहा, रबर बैंड नहीं मिल रहा। फिर पूरा हाउस सर्च का ऑपरेशन चालू होता था। सोफे के नीचे देखो, किचन के शेल्फ पे देखो, स्कूल बैग के साइड पॉकेट में देखो, और जब नहीं मिलता तो इमरजेंसी जुगाड़ मोड। 90s वॉज ऑल अबाउट द जुगाड़। डब्बे को केयरफुली बैलेंस करके हम जो है अपने स्कूल बैग में डालते थे। पूरी जर्नी टेंशन भरी होती थी कि प्लीज प्लीज प्लीज लीक मत होना यार। 90s स्कूल मॉर्निंग्स ना स्मूथ नहीं होते थे, काफी जिंदा दिल होते थे। जैसे यू नो जल्दी जल्दी दूध फिनिश करो, जल्दी जल्दी शूज पहनो, होमवर्क चेक कर लो, वाटर बॉटल तुमने भरा कि नहीं भरा। और वाटर बॉटल में से हमेशा ही मेरे तो पानी ही ड्रिप करता रहता था, मतलब उसको टांग के अगर लेकर भी जाती थी तो मेरे शर्ट के साइड पे एकदम गीला गीला, मतलब कहाँ से वाटर बॉटल से। और इसके बीच में टिफिन का डिजास्टर। स्टील टिफिन का जो साउंड है वो भी काफी आइकॉनिक ने, जैसे मैं बात कर रही हूँ आपको वो कट वाली आवाज नहीं आ रही, और कभी कभी तो इतनी ज्यादा टाइटली वो बंद हो जाता था, मैं बता रही हूँ। क्योंकि क्या है उसमें भी हम लोग हमारे आई थिंक 90s का हर चीज़ का जुगाड़ था, ठोक पीट के हम तो कुछ ना कुछ काम करा ही लेते थे, हमें भी ठोका पीटा जाता था, हम वही चीज़ जो है अपने टिफिन पे भी खुल नहीं रहा है, ठाक ठाक ठाक ठाक उसको दीवार पे मारा है, जमीन पे मारा, और तब जाके वो खुल भी जाता था। वी जस्ट काइंड ऑफ फिगर्ड आउट एवरीथिंग ऑन आवर ओन। आपको नहीं लगता है सर? मुझे लगता है हमें एक 90s वाला म्यूजिकल ब्रेक ले लेना चाहिए। नहीं, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर स्टे ट्यून्ड।

0: कंसल से कसत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: चलिए चलिए, बीच बीच में थोड़ा हमारे बॉलीवुड की तरफ भी जाते रहना बिल्कुल बनता है। वेलकम बैक टू मस्ती 90s मिक्स टेप। मैं हूं अंशु आपके साथ ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। भाई 90s के बॉलीवुड में अगर कोई चीज साइंटिफिकली इम्पॉसिबल लेवल पे इम्पोर्टेंट होती थी तो वो थी हीरो की एंट्री। और हीरो एंट्री सिंपल कभी भी नहीं होती थी 90s में। जो दरवाजा है वो हल्के से एकदम स्लोली स्लोली ओपन होगा, बैकग्राउंड में ड्रामेटिक म्यूजिक होगा, धूल उड़ रही होगी, हवा चल रही होगी, कैमरा शूज से फेस तक ट्रैवल करेगा और हीरो अल्ट्रा स्लो मोशन में वॉक करेगा, जैसे ग्रेविटी भी उसकी फैन हो गई हो। एंड द फनीएस्ट थिंग, वो 15 सेकेंड की एंट्री का सीन 90s में शूट करने में कभी कभी पूरा का पूरा दिन लग जाया करता था। दैट इज राइट, आई एम नॉट केयरिंग, क्योंकि 90s में VFX लिमिटेड क्या बहुत ही ज्यादा, मतलब हाथ बंधे हुए थे, कुछ इतना हर किसी के पास नहीं सहूलियत हुआ करती थी उस टाइम पे, तो डायरेक्टर्स को प्रैक्टिकली सब क्रिएट करना पड़ता था। डस्ट जो है वो मैनुअली उड़ानी पड़ती थी, इंडस्ट्रियल फैंस चलानी पड़ती थी फॉर दैट हवा वाला इफेक्ट, लाइट्स को एडजस्ट करना पड़ता था और हीरो की टाइमिंग को परफेक्टली सिंक करना पड़ता था इन सभी चीजों के साथ। कभी शर्ट कम फ्लटर हो रही है तो रीटेक हो गया, कभी सनग्लासेस पे गलत रिफ्लेक्शन आ रहा है तो फिर रीटेक हो गया, कभी डस्ट कैमरा पे ज्यादा आ गया तो फिर रीटेक हो गया। एंड मीनवाइल हीरो को सेम वही कॉन्फिडेंट वॉक 20 बार रिपीट करना पड़ता था। ओह माय गॉड, स्पेशली जैसे सनी देओल हो गए, हमारे सलमान खान, शाहरुख खान, संजय दत्त, उनकी एंट्रीज लिटरली इवेंट के बराबर होती थी, राइट? सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में तो ऑडियंस एंट्री पे ही सीटियां बजा बजा के कि अरे हीरो आ गया हमारा, मतलब स्टोरी तो बाद में, पहले हीरो का ऑरा और लाइटिंग भी कितनी ड्रामेटिक होती थी, नहीं? बैकलाइट से ग्लो आएगा, स्लो स्मोक आएगा, गोल्डन फिल्टर्स होंगे, जैसे नॉर्मल आदमी नहीं कोई लेजेंड आ रहा हो। आजकल ना क्विक कट्स और सीजीआई एंट्रीज दिखाई जाती है, द प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग वाज काइंड ऑफ अ स्वैग, लाइक द डस्ट एंड द फैंस एंड द स्लो मोशन। एंड ऑनेस्टली 90s बॉलीवुड को पता था हीरो सिर्फ कैरेक्टर नहीं होता, फुल ऑन इमोशन होता है। सो इसीलिए आज भी कभी ओल्ड स्कूल स्लो मोशन वॉक अगर देखती हूँ ना तो अंदर से ऑटोमेटिकली फील्स ही आ जाती है कि लगता है एंट्री होने वाली है। टिल डेट अगर एंट्री का म्यूजिक मेरे को बोलो ना बोलने के लिए तो ऐसे नहीं है, टरन, बताओ, साउंड इफेक्ट भी हमारा वहीं पर अटका हुआ है, क्या ही बताऊँ मैं। गाना सुनते हैं 90s वाले ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
2: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
3: 40% off, 40% joy Alukas.
4: 40% off? Oh my god! Let's go, let's go!
5: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.

Oh my god, रेडियो बस्ती 24/7 लाइव अंतर आपके साथ यहाँ पे चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई 90s में पब्लिक कॉइन बॉक्स के फोन्स याद आया ये सिर्फ मशीन्स नहीं थे मेरे दोस्त, मिनी इमोशनल रोलर कोस्टर्स हुआ करते थे। स्पेशली कभी भी अगर वहां पे बूथ पे जाके कॉल करना हो किसी को अर्जेंट और कॉइन अंदर जाके ऑफिशियली फंस जाए येलो या रेड कलर के वो पब्लिक फोन बूथ्स, वही याद दिलाना चाहती हूँ। STD ISD बूथ्स, ISD का तो हमें बहुत लंबे टाइम तक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, ठीक है। फिर बाद में पता चला कि भाई फॉरेन में अगर फोन करना हो तो उसको यूज किया जाता था, हमारे लिए वो बेकार ही था क्योंकि इतना ज्यादा हम कहाँ किसी बूथ में जाके किसको करेंगे, फॉरेन में हमारा कोई था ही नहीं। उसका वो समय था, कट टू आज हम खुद ही फॉरेन में हैं। टाइम्स आई टेल यू, कभी नहीं पता चलता कि आप कब इवेंचुअली कहाँ पे लैंड अप करोगे। बट एनीवेज, गोइंग बैक टू द एसटीडी बूथ, सो कॉइन डालो, फिर नंबर डाल करो और फिर प्रे करो यस कि मशीन आपके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करे। पर नेचुरली कभी कभी मशीन का मूड भी अलग हो जाया करता था, कॉइन अंदर गया पर कॉल कनेक्ट नहीं हुआ, बस फिर स्टार्ट होता था क्लासिक 90s का टेक्निकल सॉल्यूशन, फोन को हल्का थप्पड़ मारो। मैंने कहा ना, ठोक पीट के हर चीज हमें निकालनी पड़ती थी जो है 90s में। कभी साइड से शेक करो, कभी कॉइन स्लॉट पे वो जो फिंगर घुसा घुसा के या फिर उसको टैप करो, जैसे मशीन इमोशनल ब्लैकमेल से ही ऐसे ही करते हुए ठीक हो जाएगा कि बस इतना मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है, दे रहा हूँ कॉइन वापस दे रहा हूँ। सो 90s टेक्नोलॉजी स्मूथ डेफिनेटली इतनी ज्यादा नहीं थी, बिकॉज आ ही रही थी धीरे धीरे, टेम्परामेंटल थी। वाह वाह वाह वाह, टीवी एंटीना एटीट्यूड दिखाता था, कैसेट रिबन उलझ जाती थी और कॉइन बॉक्स के फोन्स कॉइन्स खा जाते थे। एंड द फनीएस्ट थिंग इज, सबको लगता था कि थोड़ा सा और जोर से इसको मारो तो हो ही जाएगा, बाहर आ ही जाएगा। कभी फोन बूथ वाले अंकल भी आकर ऐसे ही सेम ही चीज, उनको लगता था उनका थप्पड़ इज जोरदार देन वॉट एवर थप्पड़ वी वर डूइंग विद दैट कॉइन बॉक्स फोन के उसके लिए। बट इट यूज टू वर्क क्योंकि टंग से नीचे जो है कॉइन भी आ जाया करता था, यानी एक इंस्टेंट विक्ट्री वाली फीलिंग आती थी कि पता नहीं हमने क्या ही कर लिया है। मतलब 90s में ना ही सिर्फ हर चीज ब्राइट एंड ड्रामेटिक थी, हमारे थॉट्स और हम उसको किस तरह से फील करते थे वो भी कितना ड्रामेटिक हुआ करता था ना। हमें लगता था कि हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, कि वी जस्ट डिड समथिंग रियली रियली बिग। एंड आई समटाइम्स आजकल के डेट में आई अप्रिशिएट दैट वी कुड थिंक लाइक दैट 90s में, और इसी वजह से आज भी कभी कभी बहुत छोटी सी बात में हम अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि यार मैंने ये फिगर आउट कर लिया, यार मज़े ही आ गए, छोटी बात बड़ी खुशी। बट दैट इज द सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर चलिए फिलहाल एक और बात हमें बहुत खुशी देती है जब बीच बीच में ये 90s वाले गाने आते रहते हैं, चलते हैं सुन के वापस आते हैं ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Musty 24/7 Live.

0: पेंसिल से कसेट की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: अरे स्कोर कितना हुआ?
2: अरे भूल गए यार।
1: अरे उधर उस दीवार पे लिख के दे।
2: याद आया?
1: नहीं। चलो यही तो मेरा काम है, याद दिलाना ही तो आती हूँ मैं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। मैं हूँ 90s वाली अंतरा आपके साथ। यहाँ पर 90s के गली क्रिकेट के तरफ चलते हैं ना। गली क्रिकेट में अब देखो उसमें क्या है, तो टेक्नोलॉजी का, हम वो कपड़े धोने वाले बट्टे से हम अगर खेल रहे हैं तो फिर हमारी टेक्नोलॉजी तो आप समझ ही रहे हो कितनी ग्रेट थी 90s में। बट मैनेजमेंट के स्किल्स आई थिंक लेवल नेक्स्ट थे उस टाइम पे भी हमारे। देखिए स्कोरबोर्ड अगर हमारे पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दीवार है ना। बस चौक उठाओ, कभी कभी चौक भी नहीं, हम लोग ना उस साइड में कभी कोई कोयला मिल जाता था तो उसको रख लेते थे। स्कूल से चौक लेकर आते थे, कलर वाली चौक लेकर आते थे। कभी कभी ऐसे ही पत्थर उठा के अगर उसमें से थोड़ा सा भी कलर निकल रहा हो तो उसको लेकर जो है हम लोग स्कोर बोर्ड एक दीवार पर बना दिया करते थे कि 27/3 थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है। नेचुरली हर ओवर के बाद किसी ना किसी की ड्यूटी होती थी कि उस स्कोर को अपडेट करना पड़ेगा। सो 90s का क्रिकेट यानी कि गली क्रिकेट उस टाइम पे बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं था, सेल्फ ऑर्गेनाइज था। कोई अंपायर नहीं है, कोई स्कोरर नहीं है, ऐप तो डेफिनेटली नहीं है, सब कुछ प्लेयर्स ही मैनेज कर रहे होते थे। मल्टीटास्किंग जो है वो 90s वालों में बड़ी कूट कूट के इसीलिए भरी हुई है। चौक स्कोरबोर्ड्स का फुल ड्रामा हुआ करता था, कभी बॉल लग के स्कोर इरेज हो गया, कभी बारिश हो गई तो वो आधा रह गया और आधा जो है वो बह गया साथ साथ में। फिर उसके बाद बहस, ओके अरे लास्ट स्कोर 42 था, नहीं 39 था, बाप रे बाप, चिल्लम चिल्ली, ये वो। एंड नेचुरली सब अपने फेवर में उसको याद रखा करते थे, वी ऑल नो व्हाट वी डिड। इसमें तो कोई क्या ही बताए, पर समहाउ गेम जो है वो चलता रहता था। और सर वॉल्स पे स्कोर्स नहीं होते थे, प्लेयर्स के कभी कभी नाम, हमने जो टीम के इनिशियल्स, कभी सचिन 11, पता नहीं क्या क्या कुछ तो लिखा करते थे। पूरी कॉलोनी क्रिकेट कल्चर दीवारों पे यू नो एकदम एक विजिबल हुआ करता था। एंड द बेस्ट पार्ट, फाइनल ओवर का टेंशन, वॉल पे टारगेट लिखा हुआ है, 8 रन चाहिए 6 बॉल से। सडनली पूरा मैच ना वर्ल्ड कप की फील देने लग जाता था। आजकल ये जो डिजिटल स्कोर बोर्ड्स है एंड लाइव स्टैट्स है एंड ऑल, तब चौक और मेमोरी पे हमें पूरा ट्रस्ट था। एंड उस सिंप्लिसिटी में ही कितना मजा आता था, एक चौक का पीस, एक टेनिस का बॉल और पूरी इवनिंग सॉर्टेड। भाई 90s का क्रिकेट इतना इमोशनल लगता है कि उसमें फैसिलिटीज शायद कम थी, इमेजिनेशन और पैशन पूरा भरपूर मिला करता था। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं तो ऐसा लग रहा है मैं सच्ची में वापस उस गली में पहुंच गई क्रिकेट खेलने, बट ठीक है ऐसा ही होता है मेरे साथ एंड आपके साथ भी ऑन मस्ती 90s मिक्स टेप। स्टे ट्यून्ड।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: 40% off, 40% joy Lucas.
3: 40% off? Oh my God! Let's go, let's go!
4: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge.
5: Soon, soon, baba, soon, soon, baba, soon, soon, soon.
4: Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स डे।
1: भाई 90s का रिमोट कंट्रोल साइंटिफिकली काम किया करता था या इमोशनली, ये तो मुझे आज तक ही नहीं क्लियर हो पाया है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं मस्ती 90s मिक्स टेप। मैं हूं अंशु आपके साथ यहां पर, क्योंकि उस वक्त में एक ही यूनिवर्सल बिलीफ था कि भाई एक तो जो आज का ऐसा लग रहा थीम ही है ठोक पीट के कर दो, तो एक तो वो था कि ठक ठक ठक करके एकदम जो है रिमोट को थोड़ा सा मारा इधर उधर तो रिमोट चलने लगा। बट देयर वाज अनदर थिंग कि रिमोट को थोड़ा सा उठाओ, थोड़ा एंगल में, कभी ऐसे एंगल में, कभी ऐसे एंगल में, कभी वैसे एंगल में, समहाउ हमारे इमेजिनेशन में ऐसा लगता था कि रिमोट की रे जो है ना वो एकदम सीधी पहुंच नहीं रही है, तो शायद हम अगर टेढ़ी करके दूसरी जगह से एंगल मारने की कोशिश करें तो शायद जो है टीवी इसका जो है कैच कर ले। नाउ टीवी सामने ही है, डिस्टेंस भी सिर्फ शायद 6 फीट का होगा, पर फिर भी रिमोट को कभी आसमान की तरफ एंगल करके बटन प्रेस कर रहे, कभी एक आंख बंद करके उसको एम कर रहे, कभी यू नो ऑफ कोर्स थप्पड़ वाज ऑफ कोर्स दैट यूनिवर्सल उसका पूरा का सोल्यूशन। नाउ जैसे सैटेलाइट पर्सनली कन्विंस हमें करना पड़ रहा हो कि भाई चला दो यार, क्या कर रहे हो। 90s टेक्नोलॉजी लॉजिक से कम ना और भरोसे से ज्यादा चलती थी। टीवी नहीं चल रहा है, साइट पे टैप करो, कसेट अटक गया है फूक मार दो, रिमोट वीक हो गया है तो ऊपर से एंगल वेंगल चेंज कर दो। एंड कभी कभी सच में, कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई थिंक ऑल ऑफ दिस वर्कड आउट, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा था इन सब चीजों को लेकर। एंड पुराने वाले रिमोट्स भी जो है 90s के टाइम पे कितना सॉलिड हुआ करते थे यार, हैवी बॉडी होती थी, बड़े बड़े कलरफुल बटन्स हुआ करते थे, एंड द बैक कवर यूजुअली वेंट मिसिंग, दैट इज वाई वो मम्मियाँ ना उसको रैप, ऐसे रैप करके रखती थी 100 प्लास्टिक के कवर्स में कि पता नहीं क्या ही हो उसमें। नेचुरली घर में एक कोई ना कोई तो रिमोट एक्सपर्ट भी हुआ करता था कि अरे मुझे दो, तुम लोगों को कुछ नहीं पता, मैं करता हूँ मैं। फिर वो ड्रामेटिक एंगल बना के चैनल इंस्टेंटली चेंज हो जाता था, जैसे मैजिशियन हो। माई डैड ही काइंड ऑफ, जैसे ही वॉज एन इंजीनियर, सो ही काइंड ऑफ फिगर्ड आउट एवरी थिंग, एंड ही हमें, हमारे लिए तो वो सुपरमैन थे कि जब हम सभी से नहीं हुआ इट इज ओनली यू नो बापी हु कैन डू इट ओवर देयर, वो तो कर ही दिखाएंगे। आजकल कितना सब कुछ जो है AI और इन सब से स्मार्ट हो गया, राइट, वॉइस कमांड्स है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तब रिमोट का प्रॉपर बॉडी पोस्चर होता था एंड टीवी वॉचिंग भी एक फैमिली एक्टिविटी हुआ करती थी कि कोई न्यूज़ देखना चाहता है, कोई क्रिकेट देखना चाहता है, कोई कार्टून देखना चाहता है, कोई सीरियल देखना चाहता है, सो रिमोट ऑफिशियली पावर सिंबल था। इसलिए आई थिंक 90s गैजेट्स इतने लवेबल लगते हैं क्योंकि उनके साथ थोड़ा स्ट्रगल भी अटैच था। क्या क्या कुछ, ओ माय गॉड, मैं और मेरा भाई इतना लड़ते थे ना रिमोट को लेकर, इतना लड़ते थे मैं बता नहीं सकती, हम पिटे भी बहुत हैं इस लड़ाई की वजह से, जस्ट लेटिंग यू नो। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर स्टे ट्यून्ड, आप सुन रहे हैं मस्ती 90s मिक्स टेप।

0: to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi signature veg and non-veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
6: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
5: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
6: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा on Radio Masti 24/7 Live.
5: For show timings, check out the Radio Masti 24/7 Live app. RJ Mugdha ke saath. Gossip bhi, masti bhi, sarcasm bhi. Sab kuch sirf masti hangout.
7: Pencil se kasat ki reel suljhana. Crush ka naam haath pe likhkar hai sharmana. Aisa tha 90s ka zamana. Ye hai masti 90s mixtape jaane jana.
8: इतना धुआं क्यों है भाई? कहां, क्यों, कब, कैसे? 90s का सिनेमा है बॉस, धुआं तो होगा ही होगा। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराप के साथ मस्ती 90s मिक्सटेप आप सुन रहे हो और मैं हूं ऑफ कोर्स। मेरे इंट्रोडक्शन क्या ही लोगे, आप तो मेरी बात सुनो, ठीक है। 90s के बॉलीवुड के सॉन्ग्स में एक बहुत ही लाइक परमानेंटली वो चीज हवा में रहती थी, दैट वॉज फॉग, है ना। डिस्को सॉन्ग हो, रोमांटिक डांस हो, विलन का पार्टी सीन हो, सेट पे हल्का हल्का स्मोक तो कंपलसरी रहता था। कभी स्टेयर्स के पास फॉग आ रहा है, कभी डांस फ्लोर पे फॉग आ रहा है, कभी हीरो की एंट्री पे पीछे फुल क्लाउड इफेक्ट आ रहा है। और हम एक्चुअली में पहले जब जो लोग देखा करते थे ये सारे सीन्स, ऐसा मतलब क्वेश्चन आता था क्यूरियोसिटी के मारे कि ये इतना स्मोक आ कहाँ से रहा है। रियलिटी दोज वर द फॉग मशीन्स। वी हैड नो, एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट क्या फॉग मशीन्स क्या होती है, क्यों यूज होती है। वी वर जस्ट अमेज्ड विद वॉट एवर वी वर बीइंग शोन ऑन दैट टेलीविजन। ऐसा मैजिक बॉक्स इसीलिए कहते थे क्योंकि हमें हर चीज ही मैजिक के जैसे लगती थी कि ये कैसे कर दिया यार। वो फील अभी आपको नहीं लगता, आजकल के दिनों में बहुत ज्यादा कम है, बिकॉज वी नो दैट AI एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन डू सो मच। बट उस टाइम पे एवरीथिंग लाइक हम हर चीज में हमारा मुंह खुल जाता था, वाह तुझे वो देखा था, वाह। सो 90s में फिल्म मेकर स्मोक इफेक्ट्स बहुत ज्यादा यूज करते थे क्योंकि उससे लाइटिंग कैमरा पे सॉफ्ट और काफी सिनेमैटिक लगती थी। और एक स्मार्ट रीजन भी था इसका, फॉग थोड़ा सेट का बैकग्राउंड हाइड कर देता था। मतलब अगर सेट स्मॉल छोटा है या डिटेलिंग जो है वो काफी लिमिटेड है, थोड़ा सा स्मोक चला दो, सडनली एवरीथिंग यूज टू बिकम ड्रीमी काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। डिस्को सॉन्ग्स में तो नेक्स्ट ही लेवल जाता था कि मिरर बॉल्स है, नियॉन लाइट्स है, सिल्वर कॉस्ट्यूम्स है और बीच में फ्लोटिंग फॉग। पूरा एटमॉस्फेयर लगता था जैसे डांस फ्लोर नहीं म्यूजिक वीडियो का प्लैनेट हो गया हो। स्पेशली सॉन्ग्स विच फीचर्ड गोविंदा, करिश्मा कपूर, चंकी पांडे, मिथुन चक्रवर्ती, सबके अराउंड वो सॉफ्ट सा एक स्मोकी ग्लो हुआ करता था। एंड रोमांटिक सॉन्ग्स में फॉग प्लस ब्लू लाइटिंग प्लस स्लो मोशन, ऑफिशियली ये था 90s रोमांस का स्टार्टर पैक। आज क्लीन HD के विजुअल्स है, तब सिनेमैटिक इम्परफेक्शंस थी, राइट। एंड ऑनेस्टली उसी सॉफ्टनेस की वजह से 90s सॉन्ग्स ना इतना ज्यादा ड्रीमी लगते थे कि एजेस ब्लर हो गई, लाइट्स ग्लो कर रही हैं, एक्टर्स ऑलमोस्ट मैजिकल फील हो रहे हैं। एंड आज भी बॉलीवुड सॉन्ग्स आप कोई भी उठा के देख लीजिए, है ना, एक अलग सी वार्म्थ फील होती है क्योंकि वो सिर्फ गाने नहीं, एक पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर था। एटमॉस्फेयर तो हम भी यहाँ पे माहौल तैयार करेंगे क्योंकि 90s के गाने जो प्ले हो रहे हैं, है ना, तो सुने, चलिए सुनते साथ में।

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
2: हाँ जी जी,
1: आधा kg मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी।
1: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
1: क्या जी?
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू जीजी मार्ट ऑनलाइन.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो, और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
2: This one, I mean, बहुत पहले I think बात की थी, but we all know we have done this, been there, done this, and this is so very 90s. I will take that name, and you will be like, of course we know about it. भाई, वो मीठी वाली Phantom की, जी हाँ, cigarettes. Radio Masti 24/7 live. मैं हूँ अल्ट्रा के साथ. यहाँ पे चल रहा है Masti 90s mixtape. How can I not? Okay. When I'm so full of 90s की यादें at this point of time, इधर उधर की सब जगह की बातें कर रही हूँ, और somehow this was such an essential part of our 90s के memory. Okay. Though smoking is definitely, I am totally against it. It's injurious to health. But I am talking about this मीठी मीठी जो मतलब बहुत ही कमाल की चीज उन्होंने निकाली हुई थी, बिकॉज हार्मलेसली ही सही, बट वी ऑल कॉपीड इट, राइट? कूल फील करने के लिए हर बच्चे ने ये ट्राई कर रखा है भाई. एक्सपेंसिव गैजेट्स या इंस्टाग्राम फिल्टर्स नहीं चाहिए होते थे 90s के बच्चों को, बस एक पैकेट चाहिए था फैंटम स्वीट सिगरेट्स का. वो जो है वाइट कैंडी स्टिक्स, रेड टिप वाली, जिसका रंग निकलता था और वो हाथों पे भी आ जाता था. इफ यू डोंट रिमेंबर, आई रिमेंबर, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो. ऑफिशियली कैंडी एंड अनऑफिशियली फुल बॉलीवुड हीरो की ट्रेनिंग किट. एक स्टिक जो है वो एकदम एकदम जैसे जैसे हमने देखा हुआ है, एकदम सडनली एटीट्यूड हाथ में आते ही एटीट्यूड चेंज हो जाता था कि हम भी स्लो मोशन में वॉक कर रहे हैं, आंखें जो है हमने छोटी छोटी कर ली है, जैसे संजय दत्त या जैकी श्रॉफ का मोड जो है, वी कुड फील इट. नहीं, अंदर से एकदम ऐसा आता था. एंड 90s के बच्चे जो है सिनेमा को सीरियसली काफ़ी काफ़ी एब्जॉर्ब करते थे, एज यू कैन सी वेरी क्लियरली. तो भाई, अगर एक्टर या एक्ट्रेस ने सनग्लासेस पहने हैं तो हम भी पहनेंगे, कॉलर का फ्लिप करना, फैंटम की सिगरेट्स, एंड और जहाँ पे यू नो एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मोकिंग एंड ऑल हमें नहीं पता था, तो समझ में भी नहीं आता था, बस हमें लगता था स्क्रीन पे कूल लगता है तो ऐसे. एंड लड़के बहुत ज़्यादा करते थे ये, मतलब हम लोग तो बीइंग गर्ल्स हम लोग छुप छुप के क्या करती थी ये सारी चीज़ें, बट लड़के अपने अपने टशन दिखाने के लिए करते, कभी साइकिल पे, कभी क्रिकेट के ब्रेक में करते थे. नाउ बड़ा ग्रोन अप सा फील होता था कि हम अब बड़े हो गए हैं, हम फैंटम की सिगरेट जो है वो करते हैं. एंड नेचुरली फ्रेंड्स के साथ जो है ड्रामेटिक डायलॉग्स वगैरह भी आने लगते हैं, समझे क्या है? पर दो सेकेंड के बाद कैंडी भी उसको खा लेते थे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल वर किड्स, राइट? सो असली पर्पस स्वीटनेस ही था. एंड पैकेजिंग भी कितनी आइकॉनिक कर रखी थी उन्होंने, स्लिम सा बॉक्स, बोल्ड से लेटर्स, पॉकेट में रखते ही कॉन्फिडेंस डबल. एंड आज अभी इस वक्त सोचते हुए बात कर रही हूँ तो कितना इनोसेंट था ना ये सारी चीज़ें, कोई सोशल मीडिया का पोजिंग नहीं, कोई कंटेंट क्रिएशन नहीं, एक इमेजिनेशन, बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस, एंड वी आर सो डन एंड सेट मैन. वो दिन भी क्या दिन थे, ये वाला नहीं, अभी तो सिर्फ और सिर्फ 90s के गाने चलेंगे.
3: दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है. नो रियली, आई मीन इट. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, मस्ती 90s mixtape with आपकी 90s वाली अंतरा, Thursdays 11 AM onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.

कसल से कसल की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। वेलकम बैक टू मस्ती 90s मिक्स टेप। मैं हूं अंतरा आपके साथ ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। भाई एंटरटेनमेंट एक ही लेजेंड पे 90s के वक्त में डिपेंड किया जाता था। इसके ऊपर 90s में वही एक भैया थे जिनके पास पूरे मोहल्ले का हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल हुआ करता था। बताओ बताओ कौन है, कौन है? नहीं, केबल ऑपरेटर वाले भैया। आज वाईफाई ना स्लो हो तो हम लोग रीस्टार्ट कर लेते हैं, तब अगर केबल चला गया तो सीधा केबल वाले भैया को फोन मिलाया जाता था कि भैया कार्टून नेटवर्क नहीं आ रहा है। और केबल ऑपरेटर का स्टेटस जेन्युइनली काफी हीरोइक होता था, राइट? स्पेशली जब नया चैनल लॉन्च हो, पूरा एरिया एक्साइटमेंट मोड में था कि भाई स्टार मूवीज आ गया क्या। डू यू रिमेम्बर दिस चैनल कॉल्ड स्टार मूवीज? MTV चालू हो गया क्या? और अगर संडे मूवी के बीच में सिग्नल चला गया तो बस इतनी फ्रस्ट्रेशन, और फिर तो मतलब एंडलेस कॉल्स। ठीक है भैया, पिक्चर जो है ना अच्छी नहीं आ रही है, इसका वो बड़ा घिच आ रहा है। 90s में एंटरटेनमेंट ऑटोमेटिक नहीं था, लोकल नेटवर्क पे डिपेंड करता था। केबल वायर्स टेरिस पे लगाए जाते थे, जंक्शन बॉक्सेस पोल्स पे लगाए जाते थे, केबल भैया स्कूटर पे फुल इंपॉर्टेंस के साथ, और कई बार तो साइकिल में। ऑफ कोर्स कभी कभी चैनल्स ना रैंडमली डिसअपीयर भी हो जाते थे कि आज अगर स्पोर्ट्स है तो कल सडनली रीजनल म्यूजिक हो गया। फिर स्पेक्यूलेशन शुरू हो जाता था कि शायद कोई केबल का इशू है। हर बात का सोल्यूशन हमारे पास एक ही लाइन में आ जाता था। जब केबल वाले भैया आके वायर्स फिक्स करते थे तो ऐसा रेस्पेक्ट आता था उनके लिए दिल से कि मैं क्या ही बताऊं, कि जैसे इंजीनियर प्लस मैजिशियन का कॉम्बो हमने देख लिया हो। स्पेशली बच्चों के लिए तो केबल ऑपरेटर वॉज नथिंग लेस देन अ सुपर हीरो, राइट? क्योंकि कार्टून नेटवर्क या WWF, क्रिकेट के मैचेस, मूवीज सब उनके थ्रू आ रहा है। आजकल इतने सारे यू नो वी हैव चॉइसेस, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स अनलिमिटेड है, तब एक एक्स्ट्रा चैनल मिल जाना भी ना एकदम फेस्टिवल के बराबर लगता था। एंड ऑनेस्टली 90s का टीवी वॉचिंग इतना एक्साइटिंग इसीलिए था क्योंकि उसमें अनप्रडिक्टेबिलिटी काफी थी। नहीं, सिग्नल कभी परफेक्ट नहीं होगा, कभी स्नोई है, पर एक्साइटमेंट ऑलवेज। एंड शायद इसीलिए आज भी वो पुरानी केबल की तारों को देखते ही अंदर से वो सेम सी फीलिंग आती है कि भाई भैया थोड़ा सा सिग्नल अगर ठीक कर देते तो मजा ही आ जाता। नहीं, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, यहाँ पे सिग्नल बिल्कुल क्लियर है कि चलेंगे 90s वाले म्यूजिकल ब्रेक की ओर ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
3: वेल, टॉकिंग अबाउट केबल वाले भैया, तो वहीं पे मैं और इर्द गिर्द ही 90s में घूम रही हूँ। होता है ना कि आप पास वाली गली में जाओ तो लगता है कि चलो इस गली में भी जाकर देख ही लेते हैं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं मस्ती 90s मिक्स टेप। मैं हूँ 90s वाली अंतरा आपके साथ यहाँ पर। एंड 90s में इवन वॉचिंग टीवी, इट नीडेड अ स्किल सेट, राइट? 90s में मूवी देखना सिर्फ प्ले बटन दबाना नहीं होता था मेरे दोस्त, टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी तो कोई चीज हुआ करती थी। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे बड़ा टेस्ट हुआ करता था VCR का ट्रैकिंग बटन। मूवी स्टार्ट हुआ पर स्क्रीन पे लाइंस ही लाइंस आ रही है, पिक्चर शेकी सी है, साउंड डिस्टॉर्टेड सा है, हीरो का फेस जो है ना वो zigzag वैसे करके आ रहा है। और फिर एक्सपर्ट जो होता था उसको अनाउंस किया जाता था कि भाई ट्रैकिंग को एडजस्ट करो, और VCR के फ्रंट पैनल में वो एक छोटा सा ट्रैकिंग बटन या फिर उसको व्हील बुला दीजिए, थोड़ा लेफ्ट, स्लोली से राइट, और पूरी फैमिली स्क्रीन देख के जजमेंट पा, हाँ अब बेटर है, नहीं नहीं नहीं रुक रुक, ब्लर हो गया वापस से, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर। 90s में एंटरटेनमेंट पैसिव नहीं था, पार्टिसिपेशन मांगता था। कैसेट इंसर्ट करो, ट्रैकिंग सेट करो, टीवी ट्यूनिंग करो, तब जाके मूवी स्मूथ आती थी। ऑनेस्टली ट्रैकिंग एडजस्ट करना तो सच्ची में एक आर्ट हुआ करता था, ज्यादा कर दिया तो पिक्चर और खराब हो गई, परफेक्ट पॉइंट मिला तो सडनली क्रिस्टल जो है क्लियर हो गया। एंड उस मोमेंट पे जो सेटिस्फैक्शन मिलता था, ओफ क्या ही बताऊं मैं, जैसे नासा का मिशन सक्सेसफुल हो गया हो। हर घर में वैसे एक VCR का एक्सपर्ट तो होता ही होता था, यूजुअली इट्स फादर्स, एंड मेरे घर में भी माय डैड वाज द वन जो कैच इट कॉन्फिडेंटली, बिल्कुल ऐसा लगता था कि भाई उसके साथ ही पैदा हुए हो। एंड ही माय फादर यूज्ड टू लव द गैजेट्स, लाइक प्यार थे वो, प्यार मशीनों से प्यार हो जाता था ना, उनके उनके कुछ ऐसा ही था। आजकल HD स्ट्रीमिंग और ये इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाती है, तब मूवी देखने से पहले मशीन को इमोशनली कन्विंस करना पड़ता था यार 90s में। और VCR का साउंड भी आपको याद है, कसर अंदर जाते ही कट से आवाज आती थी, फास्ट फॉरवर्ड का वो अग्रेसिव सा एक नॉइज आता था, पूरा एक्सपीरियंस मैकेनिकल फील होता था यार। मतलब 90s का एंटरटेनमेंट इसीलिए मेमोरेबल लगता है क्योंकि उसमें एफर्ट भी था और स्किल भी था। एंड ऑनेस्टली आज भी ऐसे कोई ब्लरी सा वीडियो देखो तो क्या अरे लगता है कि उस जमाने का है, उस जमाने का है। ट्रैकिंग थोड़ा और ठीक करो, ट्रैकिंग थोड़ा और ट्रिक करो। इनफैक्ट VCR में, अगर आपको पता है कि नहीं पता है आई डोंट नो, सो जहाँ पे कैसेट इंसर्ट करते थे वो एक जगह होती थी, प्ले रिवाइंड ये वाले बेसिक बटन्स आपको सामने दिखते थे, बट उधर ही एक साइड में हिडन जो है सॉकेट हुआ करता था। अगर आप उसका फ्लैप खोलते थे तो अंदर सारे के सारे छोटे छोटे बहुत सारे बटन्स होते थे जिनको हमें कुछ नहीं पता था कि इसको करना क्या है इसका। ओनली माई डैड यूज टू नो उसको, आई थिंक ही, या है ना, याद आया ना, यही यही। सीरियसली, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर स्टे ट्यून्ड।

0: Tushahi Maharani for the special treat.
1: Thank you, Tushahi Maharani, for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
6: पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप, जाने जाना।
7: वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मस्ती 90s मिक्सटेप। जी हाँ, थोड़ा आपके साथ थोड़ी देर और हूँ आपके साथ यहाँ पर, बट लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट, राइट भाई। हमने आई थिंक पिछले दो एपिसोड में साइकिल हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी एपिसोड फॉर सम रीजन, तो मैंने सोचा इस एपिसोड में भी साइकिल की एक और अतरंगी। आप देख रहे हो साइकिल एक है, 90s की बातें अलग अलग तरीकों से। एक एपिसोड में हमने बात की कि जब हम साइकिल को वो रिवर्स पेडल मारते हैं तो वो एक तरह का स्वैग होता है, जब खड़े होकर ऐसे करके चलाते हैं तो वो एक तरह का स्वैग होता है। एक और स्वैग था जिसके बारे में अब मैं बात करने वाली हूँ भाई। स्पेशली साइकिल चलाते वक्त एक स्टेज आता था जहाँ पे नॉर्मल राइडिंग जो है ना बोरिंग लगने लगती थी 90s में, और फिर स्टार्ट होते थे ये अल्टीमेट स्टंट के चीजें, हाथ छोड़ के साइकिल चलाना, है ना? किया है ना, ट्राई किया है ना? बस 2 सेकंड्स के लिए ही सही, पर उस मोमेंट में फील आता था जैसे ओलंपिक का स्टंट परफॉर्म कर दिया हो। बॉडी फुल बैलेंस मोड, आगे एकदम स्ट्रेट, अंदर पैनिक मोड फुल ऑन, बट ऊपर से फेक कॉन्फिडेंस, है ना? नेचुरली फ्रेंड्स साइड में इंप्रेस्ड ऑडियंस, अरे वाह वाह, मतलब 90s में ब्रेवरी प्लान नहीं होती थी, सडनली एक्टिवेट हो जाया करती थी। कोई ट्यूटोरियल नहीं होता था, कोई सेफ्टी गियर नहीं होता था, बस एक दिन मन करता था और आज हैंड्स फ्री ट्राई करेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट ऑब्वियसली मोस्टली डिजास्टर, हैंड जो हैंडल थोड़ा सा वॉबल करेगा, पैनिक ब्रेक्स लगेंगे साइड के ग्रास में, कितने घुटने तो चिले हुए इतनी बार इस चक्कर में, पर नेक्स्ट डे वापस से हम ट्राई करते थे, क्योंकि 90s के बच्चों में आई थिंक फियर से ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी। साइकिल राइड्स भी कितनी सिनेमैटिक सी लगती थी, नहीं? शाम की हवा चल रही है, दोस्तों के साथ साइकिल में रेस लगा रहे हैं, स्टंट मोड में चले जा रहे हैं, सो कभी एक हाथ, कभी नो हैंड्स, कभी पूरा कॉलोनी फॉर्मूला 1 बना हुआ है। आजकल सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस पहले आते हैं, तब कॉन्फिडेंस पहले आ जाता था, एंड ऑनेस्टली उसी फियरलेस एनर्जी की वजह से 90s चाइल्डहुड इतना एडवेंचरस लगता था कि सिंपल रोड, सिंपल साइकिल्स, पर इमेजिनेशन फुल एक्शन फिल्म के जैसे। आज भी मतलब कोशिश तो ये करती है, आई थिंक साइकिल, टू व्हीलर साइकिल से ही मेरे को ये जो टू व्हीलर बाइक्स एंड स्कूटीज का जो शौक है वहीं से आया हुआ है, इट इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम देयर। एंड मेरी सारी प्रैक्टिस साइकिल पे बिकॉज हो रखी थी, इसीलिए जब मैं बाइक्स के साथ स्टंट्स किया करती थी, स्टॉपी व्हीली ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इट केम वेरी ईजिली एंड नेचुरली टू मी बिकॉज आई हैड ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट विद द साइकिल। TMI? No. Yes, I used to do that once upon a time. हाल ही में आई थिंक डैड के जाने के बाद वी लेट गो ऑफ माय मोटरसाइकिल माय बाइक बट या आई जस्ट लव्ड इट. सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा सा टच ही हो गया है. हम गाने सुन के वापस आएंगे. ओके स्टे ट्यून्ड.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या
1: जी? जी जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। 40% ऑफ, 40% जॉय आलुकास,
2: 40% ऑफ, ओह माय गॉड, लेट्स गो, लेट्स गो।
3: ऑफर ऐसा कि आप भी खुद को रोक नहीं पाएंगे। जॉय आलुकास लाया है द बिगेस्ट ज्वेलरी सेल, फ्लैट 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड, डायमंड, पोलकी एंड प्रेशियस ज्वेलरी एंड 100%

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
2: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर वन लास्ट टाइम, एटलीस्ट इस एपिसोड के लिए, आज के दिन के लिए। मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे थे, बोलना पड़ेगा। मैं हूं अनुप्रभा आपके साथ, एंड यहां पर बस इस नॉस्टैल्जिक सी स्माइल और एनर्जी के साथ आज का ये मस्ती 90s मिक्स टेप यहां पे पॉज ले रहा है। आप पूरे दिन इसको कंटिन्यू कर सकते हैं अपने जहन में, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, है ना। आज फिर से हम 90s के दौर में गए जहां स्टील डिफेंस का रबर बैंड मिसिंग होना भी मॉर्निंग क्राइसिस हुआ करता था। हीरो की एंट्री स्लो मोशन में हवा और डस्ट के साथ शूट होती थी, कॉइन बॉक्स में कॉइन्स फंस जाया करते थे और गली क्रिकेट का स्कोर बोर्ड वॉल पे चौक से बनाया जाता था। रिमोट को टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे करके टीवी को चलाना, फॉग मशीन का डिस्को सॉन्ग को ड्रीमी बनाना, फैंटम सिगरेट्स का हीरो का फील देना, केबल ऑपरेटर को सुपर हीरो ट्रीट करना, वीसीआर ट्रैकिंग एडजस्ट करना और साइकिल पे हैंड्स फ्री स्टंट, ऑफ कोर्स वो तो बनता ही बनता। एंड ऑनेस्टली आपने नोटिस किया, 90s में हर छोटी चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट थी पर इसीलिए ज्यादा मेमोरेबल भी थी। एंटरटेनमेंट एफर्ट मांगता था, कम्युनिकेशन पेशेंस मांगता था और फन इमेजिनेशन मांगता था। आज कन्वीनियंस ज्यादा है पर उस वक्त इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था। हम चीजों को सिर्फ यूज नहीं करते थे, उनके साथ कहानियां बना लेते थे और बॉलीवुड भी एग्जैक्टली वैसा ही था। यू नो, स्लो मोशन हीरोइज्म, फॉग, इमोशन जो है वो फुल ऑन एक्स्ट्रा हुआ करता था। 90s इसीलिए कभी भी आउटडेटेड फील नहीं होने वाला है हमको, क्योंकि सिर्फ टेक्नोलॉजी या फैशन का एरा नहीं था, फीलिंग का एरा था। वेल, बट थैंक यू वंस अगेन कि हमारे इस पेंडोरा 90s बॉक्स को खोलने के बाद ये जो हमने टाइम स्पेंड किया, आई थिंक दिस इज टोटली प्राइसलेस। आई लव्ड इट, आई होप यू लव्ड इट एज वेल। इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाजत, वापस से एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हो जाऊंगी मस्ती 90s मिक्सटेप। बाय बाय एंड टेक केयर।

0: देखो देखो वहाँ क्या,
1: सिंगापुर जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: सुनिए यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं हूँ समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेकर हाजिर हूँ यादों का कारवा, जो बनाएगा आपके पूरे दिन को एकदम फ्रेश एंड फ्रेश। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यादों का कारवा। आज के कारवा की शुरुआत हम करेंगे देखा है पहली बार गाने से, क्योंकि ये जो कमाल का गाना है फिल्म साजन का, ये मुझे बहुत पसंद है। और खास तौर से जो इसका इंटरल्यूड म्यूजिक है ना, वो मुझे बड़ा पसंद है। और ये गाना जब मैंने पहली बार सुना था तो इसी जो इंटरल्यूड की वजह से ये बार बार सुना, और इतना सुना कि ये गाना याद हो गया था। फिल्म थी साजन और बाय गॉड क्या फिल्म थी। फिल्म ने धूम मचा दी थी 1991 में। इस फिल्म में लंबे लंबे बालों वाले संजय दत्त थे और नॉटी नॉटी सल्लू भैया थे। और उफ हाय, पूरी फिल्म में बला की खूबसूरत नजर आई थी माधुरी दीक्षित, तीन सुपरस्टार एक साथ। और म्यूजिक पूछे ही मत, 9 गाने थे फिल्म में जिसमें एक दो बार था, और हर गाना सुपर डुपर हिट था। फिल्म बनाई थी लॉरेंस डिसूजा ने, और इसके बाद भी उन्होंने कई फिल्में बनाई, लेकिन वो इसी फिल्म से जाने जाते हैं। फिल्म की कहानी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, शायद आपने देखी होगी ये फिल्म, तो मैं क्या कहानी सुनाऊंगा, आप मुझे कहानी सुना देंगे उल्टा। लेकिन नहीं देखी है आपने तो देख जरूर लीजिएगा, 90s के फील के लिए इससे बेहतर फिल्म नहीं है। बाय गॉड, एक बार जरूर देखिएगा। अच्छा, कुछ मजेदार बातें आपको बताता हूं मैं। जैसे पहले ये फिल्म आमिर खान को ऑफर हुई थी, संजू बाबा वाला रोल मिल रहा था उन्हें। सोचे सोचे कैसे लगते वो साजन, हा? वैसे तो वो भी अच्छे लगते, लेकिन संजू बाबा ने जो धाक जमाई ना, मुझे नहीं लगता कि उनकी जगह कोई और ले सकता था। आमिर को फिल्म पसंद आई भी थी, लेकिन रोल से वो कन्विंस नहीं हो पाए थे। अच्छा, एक और बात, फिल्म सिर्फ 36 दिन में बनकर पूरी हो गई थी, 36 days में। अजीब है ना, इतने बड़े बड़े स्टार्स और सिर्फ 36 दिन में पिक्चर पूरी। और बताऊं आपको, उस जमाने में फिल्में ना 25 से 50 हफ्ते तक चलती थी। ये भी चली थी। और हाँ, माधुरी वाला रोल भी ना पहले माधुरी को नहीं मिला था, आयशा जुल्का को ऑफर किया गया था, वही पहला नशा पहला खुमार वाली आयशा। लेकिन उन्हें शूटिंग के पहले दिन ही तेज बुखार आ गया और फिल्म में हो गई माधुरी जी की एंट्री। इस तरह से फिल्म की ये कास्ट बनी, और ये फिल्म कमाल के गानों के लिए हमेशा याद की जाएगी। आज भी इसके गाने बड़े अच्छे लगते हैं, कसम से याद कीजिए। जिए तो जिए कैसे बिना आपके, या फिर मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, ये वाला मुझे बहुत पसंद है कुमार सानू की आवाज में। आपकी भी इच्छा होगी ना एल्बम ढूंढने की, पर इसे आप बाद में सुनिएगा, पहले आप ये गाने सुन लीजिए। इस फिल्म के और उस दौर के कुछ और गानों के साथ शुरू कर लेते हैं यादों का कारवां।

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off. Oh my god. Let's go. Let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.
3: दिल है कि मानता नहीं, आपसे बार बार मिलने चला आता है। मैं हूँ समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं यादों का कारवां विद समर ऑफ कोर्स। तो ये जो फिल्म है दिल है कि मानता नहीं, उसी का हम जिक्र करेंगे, उसी की बात करने वाले हैं। इस फिल्म का यही टाइटल ट्रैक था, दिल है कि मानता नहीं। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अपने महेश भट्ट साहब ने इसे बनाया। वैसे तो बड़ी संजीदा फिल्में वो हमेशा बनाते रहे, लेकिन ये फिल्म उन्होंने अपनी लाडली पूजा भट्ट के लिए बनाई थी और सच में खासी मजेदार रिफ्रेशिंग मूवी थी। ये फिल्म पूजा भट्ट की पहली बड़ी कमर्शियल सक्सेस थी और फिल्म के गानों ने जमकर धूम मचाई थी। फिल्म का म्यूजिक उस समय हर फिल्म में धूम मचा रहे नदीम श्रवण ने दिया था और फिल्म में कुल 11 गाने थे और सारे के सारे सुपर डुपर हिट। गाने गाए थे अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू और बाबला मेहता ने। फिल्म का प्लॉट हालांकि नया नहीं था, ये 1934 में आई एक हॉलीवुड फिल्म इट हैपेंड वन नाइट से लिया गया था, जिस पर राज कपूर नरगिस की क्लासिक चोरी चोरी भी बनी थी। फिल्म का प्लॉट भले ही नया नहीं था, लेकिन ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग था। अनुपम खेर की हेयर स्टाइल कमाल की थी और फिल्म के आखिर में बोला उनका डायलॉग आज भी लोगों को याद है, जिसमें वो अपनी ही बेटी को शादी के मंडप से भागने की सलाह दे देते हैं। फिल्म में आमिर खान एक प्रेस रिपोर्टर के रोल में, रघु उनका नाम था, रघु जेटली, और उनका गेटअप बड़ा कमाल का था, टोपी पहने रहते हैं पूरी फिल्म में। और ये जो कैप थी ये बड़ी मशहूर हो गई थी उस जमाने में, और ये कैप भी ऐसे ही नहीं थी, इस कैप को ढूंढने में घंटों लगाए गए थे। फिल्म में अनुपम खेर का लुक चंकी पांडे के फादर से मिलता जुलता था और हाँ, पापा महेश भट्ट ने पूजा को धमकी दे दी थी, यदि उन्होंने लिप सिंकिंग नहीं की तो फिल्म से निकाल देंगे उनको। दरअसल पूजा को गानों में लिप सिंकिंग करने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन पूजा ने भी कमिटमेंट दिखाया और क्या कमाल का काम किया। फिल्म भी जमकर चली और आज भी देखिए मूड फ्रेश कर देती है, एकदम ताजी हवा का झोंका टाइप की है ये फिल्म। तो ये फिल्म बहुत बेहतरीन थी और इससे जुड़ी यादें भी थी जो बहुत बेहतरीन थी। मुझे याद है मैंने ये फिल्म देखी थी इंडिया में, तो उस वक्त एक गाना था शुरू शुरू में, गालिया सांकली सोनियाची, बाबला मेहता की आवाज में गाना था, दीपक तिजोरी पर पिक्चराइज था, मछुआरे गाना गा रहे हैं क्योंकि वो लोग पूजा भट्ट को बचाते हैं, वहां ये गाना आता है। और ये गाना हालांकि इस एल्बम का वन ऑफ द बेस्ट गाना नहीं है, लेकिन लोगों में इतना क्रेज था इस फिल्म के गानों का कि इस गाने को सिनेमा हॉल में बार बार चलवाया गया, 3-4 बार, फिर पुलिस बुलवाई गई, तब जाकर फिल्म आगे बढ़ी। वरना लोग क्या करते थे कि जो प्रोजेक्शन विंडो होता है ना, उसके सामने खड़े हो जाते थे या वहां अपनी शर्ट लगा देते थे ताकि उनकी डिमांड सुनी जाए और फिल्म को रिवाइंड करके ये गाना सुनाया जाए, फिर से दिखाया जाए, और वो डांस करते थे साथ साथ। तो ये आलम था इसके म्यूजिक का। जब आपने फिल्म देखी थी तब आपके साथ क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, कौन से किस्से हैं जो आज भी आपको याद हैं, हमसे जरूर शेयर कीजिएगा हमारे फेसबुक पेज पर। अगर फिलहाल ये गाने आपके लिए।

वेलकम बैक, यादों का कारवां है ये और मैं हूँ समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। 1991 की फिल्मों की बात करके 1992 की एक बेहतरीन फिल्म की मैं बात करने वाला हूँ। फिल्म का नाम था जो जीता वही सिकंदर और इसका वो गाना पहला नशा पहला खुमार, क्या बात है। ये गाना आज भी वैलेंटाइंस डे पर इंडिया में तो जमकर चलता है। हालांकि इसके कवर वर्जन आ गए हैं, रिमिक्सेस बन गए हैं, लेकिन गाने की फीलिंग कमाल की है। आज भी सुनकर ही नहीं बल्कि देखकर भी कमाल लगता है गाना। आयशा जुल्का और आमिर खान पर पिक्चराइज है गाना। वैसे फिल्म के बारे में अगर हम बात करें तो जो जीता वही सिकंदर एक स्पोर्ट्स ड्रामा थी जिसमें थी मैराथन साइकिल रेस और ढेर सारी मस्ती। फिल्म का प्लॉट बहुत ही अपीलिंग था। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बच्चों की राइवलरी दिखाई गई है इसमें। इतना अपीलिंग प्लॉट था जिसने फिल्म को उस साल की सबसे बड़ी हिट बना दिया था। फिल्म का म्यूजिक जतिन ललित ने दिया था जो बिल्कुल न्यूकमर थे और इस फिल्म के भी सारे गाने खूब चले। फिल्म के गाने लिखे थे वेटरन सॉन्ग राइटर मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और नासिर हुसैन साहब थे इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर। वो परमानेंट सॉन्ग राइटर थे नासिर हुसैन साहब की ये फिल्म थी। वैसे नासिर हुसैन साहब की फिल्मों में बहुत कुछ बदला लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी नहीं बदले। आपको पता है पहला नशा सॉन्ग की कोरियोग्राफी अपनी फराह खान ने की है। दरअसल फिल्म की कोरियोग्राफर सरोज खान इस गाने की शूटिंग पर नहीं आ सकी और फराह जो डायरेक्टर को असिस्ट कर रही थी उन्हें इस गाने की कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी दे दी गई और बस तब से फराह की कोरियोग्राफी का नशा सबके सिर चढ़कर बोल रहा है। ये पूरा गाना स्लो मोशन में पिक्चराइज है और बेहद खूबसूरत दिखता है। अच्छा होता गया कि स्लो मोशन में जब कुछ पिक्चराइज करते हैं तो फिल्म कैमरे की स्पीड को बढ़ा देते हैं तो कैमरा ज्यादा फ्रेम कैप्चर करता है और जब इन ज्यादा फ्रेम्स को स्टैंडर्ड रेट पर दिखाया जाता है तो ये स्लो मोशन में नजर आता है। तो गाने के साथ ये पहली बार एक्सपेरिमेंट हो रहा था। अब इसमें समस्या क्या आ रही थी कि गाने को लिप सिंक कैसे करें। तो फराह ने सलाह दी कि सारे एक्शन बहुत फास्ट फास्ट करने पड़ेंगे आपको, ये लिप जो है बड़े तेज तेज चलाने पड़ेंगे, जैसे पहला नशा पहला खुमार, मतलब तेज तेज गाएंगे तब जाकर ये स्लो मोशन में आपके लिप पर सिंक दिखाई देगा। तो इसकी शूटिंग में भी बड़ा मजा आया और कितना डिफिकल्ट रहा होगा ये सोचकर देखिए। इतना रोमांटिक गाना है लेकिन उसको आप तेज तेज गा रहे हैं टेक्निकली करेक्ट करने के लिए, लेकिन एक्सप्रेशंस और इमोशंस जो आपके चेहरे पर आ रहे हैं वो वैसे ही प्यार के रहेंगे। बहुत डिफिकल्ट, मतलब सोचकर ही मुझे ऐसा लगता है कैसे किया होगा, लेकिन वो तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट है ना आमिर खान, वो सब कर लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो। फिल्म में आमिर खान के बचपन का रोल उनके भांजे इमरान खान ने किया था। अरे भाई जाने तू या जाने नामे जो थे। अच्छा फिल्म के डायरेक्टर मंसूर खान ने फिल्म इतनी ज्यादा शूट कर ली थी कि एक दूसरी फिल्म भी उसमें से बन सकती थी, लेकिन फिल्म कमाल की है। आपकी कॉलेज लाइफ याद आ जाती है आपको और यादों का कारवां का तो मकसद ही है कि कुछ यादें आपकी ताजा की जाएं। हमारी फिल्मों के जरिए हम ताजा करेंगे और आप हमारे फेसबुक पेज पर आकर अपनी यादों के कारवां को आगे बढ़ाते रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए यादों का कारवां विद समर ओनली ऑन रेडियो मसी 24/7 लाइव सिंगापुर्स ओनली हिंदी रेडियो नाउ ऑन द गो।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085 6577।

वेलकम बैक, मेरा नाम है जमर, रेडियो मजी 24/7 लाइव पर एक बार फिर से आपका स्वागत। ये है यादों का कारवां और आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद सेंसुअस गाने की। नहीं, आज नहीं कर रहे, अभी करने वाले हैं। अगर एक लिस्ट बनाई जाए बेहद सेंसुअस गानों की, तो उनमें एक गाना है जो जरूर जरूर जरूर होगा और वो है धक धक करने लगा। धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित पर पिक्चराइज गाना। ऑरेंज कलर का डिजाइनर आउटफिट और माधुरी दीक्षित की मोहक मुस्कान ने ऐसा समा बांधा कि आज भी ये गाना कहीं भी दिख जाए या सुनाई दे जाए तो कदम ठिठक जाते हैं। आपको बताऊं, मैं 1992 में आई इस फिल्म का नाम था पहले बड़ी बहू, लेकिन 60s टाइप का नाम लगाइए, इसलिए शायद बाद में इसे बेटा कर दिया गया। वैसे ये फिल्म एक तेलुगु फिल्म एंगा चिन्ना रासा का रीमेक थी और माधुरी वाला रोल भी पहले श्रीदेवी को दिया गया था, लेकिन उन्हें लगा कि उन्होंने अनिल कपूर के साथ कई फिल्में कर ली, सो उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी। वैसे ये धक धक सॉन्ग भी तेलुगु फिल्म से लिया गया था और उसमें थे श्रीदेवी और चिरंजीवी। खैर, फिल्म तो चली और खूब चली साहब। इंदर कुमार ने फिल्म बनाई जो आजकल पता नहीं क्यों मस्ती टाइप की फिल्में बना रहे हैं, या वो धमाल जो सीरीज है वो इंदर कुमार की है। अच्छा, पहले अरुणाई रानी वाला रोल भी वहीदा रहमान जी और माला सिन्हा के साथ शर्मिला टैगोर को भी ऑफर किया गया, लेकिन जब इन सब ने मना कर दिया कि ये तो नेगेटिव शेड वाला रोल है, तब ये अरुणा जी तक पहुंचा। वेल, ये 1992 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और इसने 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते थे। तो ऐसी फिल्म के गाने नहीं सुने तो फिर क्या सुना। तो आइए गाने सुनते हैं और इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। आप सुनते रहिए यादों का कारवां, रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर समर के साथ।

0: Tushahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Veg and Non-Veg dishes for just $25 plus plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
5: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
6: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
7: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
8: Good morning!
6: वेलकम बैक, समर के साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप एंजॉय कर रहे हैं यादों का कारवां। और ये काफिला आपके बगैर अधूरा है, ये कारवां आपके साथ ही पूरा हो सकता है। कुछ यादें आपकी, कुछ हम आपको याद करा रहे हैं हिंदी फिल्मों के जरिए, उनके बेहतरीन नगमों के जरिए। जुम्मा चुम्मा दे दे, ओए होए, क्या सीन होता था ना भाई गॉड। काले रंग का कोट और लाल रंग का गमछा, देसी भाषा में उसे गमछा ही कहते हैं, गले में डाले अमिताभ बच्चन जैसे इस गाने की शुरुआत करते थे, सिनेमा हॉल में लोगों को संभालना मुश्किल हो जाता था भैया। और पूरे गाने में जितना शोर स्क्रीन पर होता था उससे ज्यादा शोर थिएटर में होता था। इस गाने से जुड़ा बड़ा रोचक ऐसा यह है कि गाना ओरिजिनली रमेश सिप्पी साहब की फिल्म राम की सीता शाम की गीता के लिए रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें अमिताभ और श्रीदेवी का डबल रोल होना था। फिल्म बनी नहीं तो हम के डायरेक्टर मुकुल आनंद ने यह गाना अपनी फिल्म अग्निपथ के लिए ले लिया, जिसमें यह सॉन्ग अमिताभ और अर्चना पूरण सिंह पर फिल्माया जाना था। लेकिन मुकुल को लगा कि यार अग्निपथ में अमिताभ ऐसे गाने गाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। वैसे मुकुल ने ठीक ही सोचा था। अब आप ही बताइए, वो जय थी नाना चौहान जुम्मा चुम्मा गाता तो कैसा लगता, ए जुम्मा चुम्मा दे दे। वैसे ये गाना अल्टीमेटली हम में शिफ्ट हो गया और अमित जी किमी काटकर के साथ जुम्मा चुम्मा गाते हुए और करते हुए दिखे। एक किस्सा और हुआ, उसी साल संजू बाबा और माधुरी की थानेदार भी आई और उसके तम्मा तम्मा की धुन जुम्मा चुम्मा जैसी ही थी। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही गाने विदेशी सिंगर मोरीकांट के सॉन्ग तम्मा के रीमेक थे। अब ये सब चलता रहता भाई, अपने को तो सिर्फ मजा लेना चाहिए, नहीं और वो मिल रहा है। अब किधर

आया, क्यों आया, कौन लाया, इसे क्या करने का आपने को? और एक बार बताऊं आपको, फिल्म में गोविंदा भी थे और जब फिल्म साइन की गई तो वो उस समय ऑलरेडी 38 फिल्में कर रहे थे। पर अमित जी के साथ पहली बार रोल मिल रहा था, सो भाई ने छोड़ा नहीं ये रोल। फिल्म बहुत ही कमाल की है, फिल्म से जुड़ी बहुत सारी याद है। टाइगर याद आ गया मुझे, टनना टनना, टाइगर की ऐसी एंट्री होती है इस म्यूजिक के साथ, इंट्रो म्यूजिक के साथ। देखिए ना, जब हम पुरानी फिल्मों की बातें करते हैं तो कितनी सारी यादें चली आती हैं। ऐसी कुछ यादें आपके जहन में भी होंगी जब आपने हम देखी होगी, कहाँ देखी थी, कैसे देखी थी, किसके साथ देखी थी, और बंक मार कर देखी थी या फैमिली के साथ देखी थी। फैमिली के साथ देखी थी तो जुम्मा चुम्मा वाले गाने में आप क्या कर रहे थे? मतलब उस जमाने में तो बड़ा टैबू टाइप का था ना ये। खैर, यादें आ गई होंगी आपको भी बहुत सारी, हमसे शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल ये गाने सुनते हैं।

0: देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं यादों का कारवा विद समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। इमली का बूटा बेरी का बेर, इस फिल्म की मैं बात करने वाला हूँ। नहीं, ये फिल्म नहीं, ये फिल्म का गाना है। शोमैन सुभाष भाई की फिल्म सौदागर का ये गाना है। वास्तव में ये बहुत ही बड़ी फिल्म थी। बीते दौर के दो बड़े सुपरस्टार दिलीप कुमार साहब और राजकुमार साहब को एक बहुत बड़े अंतराल के बाद एक साथ पर्दे पर लाने का काम किया था सुभाष भाई ने। दोनों का अपना स्टाइल, अपना ही रंग और इन दोनों की मौजूदगी ने ही फिल्म को इतना बड़ा हिट बना दिया। इन दोनों ने सौदागर से 30 साल पहले फिल्म पैगाम में साथ काम किया था और पूरी फिल्म इंडस्ट्री ये मानती थी कि दोनों एक साथ कभी काम नहीं कर सकते, क्योंकि राजकुमार साहब का अक्खड़ मिजाज पूरी इंडस्ट्री जानती थी और दिलीप साहब तो दिलीप साहब ही। खैर, सुभाष घई साहब ने सबको गलत साबित कर दिया। फिल्म तो सुपर डुपर हिट होनी ही थी। हालांकि घई साहब को कई मुश्किलें भी आईं। जैसे एक रोचक किस्सा यह है कि फिल्म के सेट पर जब राजकुमार पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि दिलीप साहब को तो हरियाणवी टाइप की हिंदी बोलनी है और उन्हें सिंपल हिंदी में डायलॉग बोलने। बस राजकुमार साहब हो गए नाराज और सुभाष जी से बोले, जानी ये तुमने अच्छा नहीं किया, हम अभी ये फिल्म छोड़ रहे हैं। बाद में सुभाष घई साहब ने उन्हें 2 घंटे तक समझाया, मनाया, सर फिल्म में आपका रोल एक खानदानी रईस का रोल है, वहीं दिलीप साहब एक किसान का रोल कर रहे हैं, इसलिए ये फर्क है, गांव के हैं वो। तब जाकर राजकुमार माने और फिल्म के पर्दे पर वीरू सिंह और राजेश्वर सिंह की धुआंधार डायलॉग बाजी उतर पाई। एक सीन मुझे इस फिल्म का बहुत बढ़िया लगता है जब दोनों एक नदी के दोनों ओर से डायलॉग बाजी करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दिलीप कुमार और राजकुमार साहब की। इधर दिलीप कुमार साहब शराब पिए हुए होते हैं और कैसे इनेक्ट करते हैं वो कमाल है भाई, कमाल है, बता नहीं सकता हूँ मैं शब्दों में, वो तो देखना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, इसी फिल्म से विवेक मुश्राण और मनीषा कोइराला की भी फिल्मों में एंट्री हुई और दोनों छा गए। हालांकि विवेक मुश्राण की पारी ज्यादा नहीं चली, थोड़ी सी फिल्में करने के बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। टीवी सीरियलों में नजर जरूर आए, आजकल भी किसी एक आध टीवी सीरियल में वो आते हैं, लेकिन मनीषा कोइराला अभी संजू में, संजू की मम्मी थी, नरगिस जी का रोल किया था उन्होंने। तो इस तरह से ये बेहतरीन सफर तब शुरू हुआ था। चलिए इन बेहतरीन गानों के साथ हम भी इस कारवां को आगे बढ़ा लेते हैं, इस सफर को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। सुनते रहेगा यादों का कारवां विद समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। एंड यू नो सिंगापुर का ओनली हिंदी रेडियो कौन सा है? यस यू गाइस राइट, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, जो हमेशा आपके साथ है 24 घंटे 7 दिन।

वेलकम बैक समर के साथ हैं आप रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर सुन रहे हैं यादों का कारवां। मैं जब इंडिया से सिंगापुर आया तो कई समंदर पार करके आया, लेकिन यह मोहतरमा कहती है कि 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। हाई किधर है भाई? नहीं नहीं कोई नहीं है मेरे साथ। फिल्म विश्वात्मा का ये गाना, पिक्चर जो थी ये ठीक ठाक थी, सेमी हिट थी, लेकिन गाना सुपर डुपर हिट हो गया। क्या चला ये गाना साहब, आज भी चलता है, रिमिक्स में भी खूब बजता है गाना। खूबसूरत गुड़िया सी दिखने वाली दिव्या भारती, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको इसी गाने ने फेमस बनाया था। आपको बताऊं कि हाल ही में बड़ी फिल्में बनाने वाले प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने 1.5 करोड़ रुपए में ये गाना खरीदा है, क्योंकि वो अपनी पत्नी दिव्या भारती को ट्रिब्यूट देना चाहते थे। ये गाना साजिद ने अपनी फिल्म किक में इस्तेमाल किया। किक में सलमान इस गाने पर डांस करते दिख रहे हैं और ये फिल्म विश्वात्मा का गाना है। और फिल्म बनाई थी त्रिदेव बनाने वाले राजीव राय ने। त्रिदेव याद है ना आपको, ओए ओए वाली फिल्म, जिसके जरिए नसीर साहब की कमर्शियल सिनेमा में बड़ी एंट्री हुई थी। राजीव राय की फिल्मों का म्यूजिक बहुत डिफरेंट होता था। विजू शाह उनके म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे, क्योंकि राजीव राय ने ही बाद में गुप्त बनाई थी और उसका म्यूजिक भी विजू शाह ने दिया था और शानदार था वो भी। चलिए फिलहाल ये गाने सुनते हैं, सुने आइए।

रोशनी गर खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में चराग जलते हैं, खुदा गवाह। वेलकम बैक, मेरा नाम तो समर है लेकिन ये डायलॉग जो बोला था वो बादशाह खान ने बोला था, नहीं बजाने बादशाह खान को। खुदा गवाह फिल्म का नाम जिसका मैं जिक्र करने वाला हूँ, जिसका ओपनिंग सीन ही शानदार है। जब बुजकशी के लिए घोड़ों पर दौड़ते बादशाह खान यानी अमिताभ बच्चन और बेनजीर यानी श्रीदेवी की नजरें आपस में टकरा जाती हैं। ओए होए होए, क्या सीन था। 1992 की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी ये फिल्म और उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म थी। बताते हैं कि अफगानिस्तान में ये सबसे ज्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्म है। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग अफगानिस्तान में ही हुई थी और खास बात यह है कि उस समय के अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने पूरी यूनिट को एफओ सिक्योरिटी दे रखी थी। फिल्म ने पहले सप्ताह जमकर ओपनिंग ली लेकिन फिर कलेक्शन थोड़े डाउन हो गए। जबकि बताते हैं कि ये 1 करोड़ पर टेरिटरी के हिसाब से बिकी थी उस जमाने में, उस दौर के हिसाब से काफी महंगी रेट थी। इसी फिल्म पर बाद में पाकिस्तान में टीवी सीरियल भी बना। अमित जी ने इस फिल्म के बाद खुद को फिल्मों से दूर कर लिया था। फिर वो 4-5 साल बाद फिल्मों में लौटे थे। श्रीदेवी फिल्म में बलाह की खूबसूरत दिखाई दिए और फिल्म के कॉस्ट्यूम भारी भरकम थे, इसलिए सेट पर 20 एयर कंडीशंस एक साथ चलते थे। फिल्म मुकुल आनंद ने बनाई थी और अमित जी के साथ ये अग्निपथ और हम के बाद उनकी तीसरी और आखिरी फिल्म थी। दर्शकों को फिल्म से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, इतनी बड़ी स्टार कास्ट, अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी दिख रहे हैं, तो वैसा उनको मिला नहीं। हालांकि श्रीदेवी डबल रोल में थी और नागार्जुन उनके दूसरे हीरो थे और उसके अलावा शिल्पा शिरोडकर भी थी, डैनी भी थे। इतना होने के बाद भी फिल्म ज्यादा मतलब चली तो सही, कमाई तो बहुत की लेकिन लोगों को जोड़ नहीं पाई। तो हुआ ये कि इसके जो इतने बेहतरीन नगमे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक, वो कहीं ना कहीं इस फिल्म के साथ ही दब गया। तो हमने सोचा कि चलिए आज यादों का कारवां में इस फिल्म का जिक्र कर लिया तो इसके कुछ गाने भी सुन लेते हैं। आइए सुनिए मेरे साथ इन गानों को और एंजॉय कीजिए और अपनी यादों को हमसे शेयर करते रहिए हमारे फेसबुक पेज पर आकर। मैं बस यूं गया और यूं आया।

0: Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ.
5: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ.
6: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां.
7: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग. The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
8: Good morning!
6: स्वागत आप सभी का एक बार फिर से. मैं हूँ समर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. पहले मुझे समर लेजेंड्स वाला के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब मैं यादों का कारवां के जरिए आपसे मुखातिब होता हूँ. चलिए अब उस फिल्म की बात करता हूँ जिसमें था राजू जो बन गया था जेंटलमैन. जी जिसे सर्दी न खांसी न मलेरिया हुआ था, उसे लवेरिया हुआ था. ये फिल्म थी किंग खान की पहली सोलो हिट फिल्म और बेहद खूबसूरत फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन. अजीज मिर्जा जैसा डायरेक्टर और बबली जूही चावला के अलावा रफ एंड टफ नाना पाटेकर थे इस फिल्म में. और ये गाना सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ बड़ा हिट हुआ था और आज भी पसंद किया जाता है. फिल्म का प्लॉट राज कपूर साहब की क्लासिक श्री 420 से मिलता जुलता है. और ये फिल्म जब रिलीज हुई थी उस दौर में हमारा देश इकोनॉमी के मामले में खुल रहा था, लिबरल हो रहा था. और इस फिल्म ने एक बार फिर मिडिल क्लास, सोबर से रोमांस और सिंपल कहानियों के सिल्वर स्क्रीन पर लौटने की उम्मीद जगा दी थी. एक रोचक बात यह है कि फिल्म जापान में भी रिलीज हुई और वहां भी बहुत ज्यादा पसंद की गई. इसके अलावा कनाडा में इसे खूब पसंद किया गया. हमारे यहाँ तो हिट थी ही, ये फिल्म आज भी रिफ्रेशिंग लगती है. और इस फिल्म के बाद शाहरुख और जूही ने कई फिल्में साथ साथ की. इस फिल्म के समय तक शाहरुख बड़े स्टार नहीं थे जबकि जूही बड़ी स्टार हो चुकी थी. खैर जी दोनों की वेवलेंथ ऐसी मिली कि आज भी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और बिजनेस पार्टनर्स हैं. इनकी ये जोड़ी यूं ही बनी रहे और देखिए क्या खूबसूरत सफर रहा होगा इनकी यादों का. हाँ आपकी यादें 1992 से कोई है हमें बताइए. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर हम बैठे ही आपकी यादों को सुनने के लिए. उस जमाने में क्या हुआ होगा, कैसे होता था, सब कुछ बताइएगा हमें. और सुनते जाएगा यादों का कारवां विद समर.

और लीजिए देखिए चलते चलते हम कहां तक आ पहुंचे हैं, कहां तक आ पहुंचे हैं, यहीं तो बैठे हो। वेलकम बैक, मेरा नाम है समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। लेकिन हाँ, अब जाने का वक्त होने लगा है, तो वादा रहा सनम होंगे जुदा ना हम। आए चलिए इसी फिल्म की बात कर लेते हैं। फिल्म खिलाड़ी का ये गाना था, कमाल की तासीर थी इस गाने की। नहीं, ये गाना उस समय जितना ताजा लगता था आज भी उतना ही रिफ्रेशिंग लगता है। अभिजीत और अलका याग्निक ने इसे बहुत डूब कर गाया है। इस फिल्म से अक्षय कुमार को खिलाड़ी कुमार का टाइटल मिल गया और अक्षय ने इसके बाद खिलाड़ी नाम से ही 7 फिल्में और की। फिल्म में सस्पेंस कमाल का था और 3 महीने तक फिल्म के सारे शो हाउसफुल चले थे। और हमारे तो वैसे भी अच्छा म्यूजिक हो, अच्छा सस्पेंस हो, तो फिल्म को सुपरहिट होने से कोई रोक ही नहीं सकता। वो कौन थी जैसी 60s की कई फिल्में इसका सबूत भी हैं। इस फिल्म ने कईयों की किस्मत चमकाई थी, जैसे अक्षय कुमार की ये पहली बड़ी हिट थी। श्वेत वस्त्रधारी यानी हमेशा सफेद कपड़े पहनने वाले फिल्म डायरेक्टर डुओ अब्बास मस्तान दोनों भाइयों की ये पहली बड़ी हिट फिल्म थी। म्यूजिक डायरेक्टर जतिन ललित को इस फिल्म ने बुलंदी पर पहुंचा दिया था। हालांकि इतनी बड़ी हिट के बाद भी अब्बास मस्तान ने जतिन ललित को कभी रिपीट नहीं किया। और हाँ, यहाँ तक कि म्यूजिक कंपनी वीनस भी इसी फिल्म से चमकी थी। फिल्म नहीं देखी हो आपने तो देखी जा सकती है एक बार, और देखी हुई हो तो भी देखी जा सकती है, क्योंकि जॉनी लीवर की सबसे अच्छी फिल्मों से एक है ये। तो दोस्तों, ये था आज का यादों का कारवां। दरअसल हमारी हिंदी फिल्मों के साथ इतना कुछ जुड़ा हुआ है कि सुनते जाइए और बस सुनते जाइए। लेकिन समय की सीमा है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक नए शो के जरिए, कुछ नए गानों और उनसे जुड़ी इंटरेस्टिंग बातों के साथ। दीजिए मुझे इजाजत, और जाते जाते अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार, बाय बाय।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय?
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल? इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग?
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप?
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।
2: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे

आंखों से हटाया चश्मा, आंखें तो मिलाओ जी। दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी। अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी। उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ।

जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पल को तकाया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तो क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आंख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तो क्यों रोता है।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय
1: वो आ गया देखो वो आ गया
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव
0: How to make best of weekends that travel faster than life. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: मेरा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: The best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर,
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
0: वाजी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड, मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: सुबह सुबह ऐसा गाना चला देते हैं कि मतलब कमरे में तो छोड़ो, मैं तो नहाते टाइम भी इसी गाने पे नाच सकती हूँ। ऑन रेडियो मस्ती 24/7 आइए बनवाड़ी।
1: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: ताकि अब नाचते नाचते जो है स्टूडियो में एंट्री करे और मई को बाय बाय कहे कि मई आई से बाय बाय टू यू।
0: यही गंदा वाला जोक जो हम पता नहीं कितने सालों से मार रहे हैं मई के महीने में। इतना बता सकती हूँ कि व्हेनेवर मई कम्स इन आवर लाइव्स वी से मई यू लीव नाउ। तो अब मई का महीना जा रहा है और हम और आप के साथ में हम जून की तरफ जाएंगे। वो कहते हैं ना कि अगर तुम किसी के, और ये मैंने पहले भी कहा होगा कभी, कि किसी का के हाथ से पानी छीन लो तुम और बोलो नहीं नहीं नहीं नहीं तेरे हाथ में पानी है, पहले मैं पीऊंगा है, और तो वो कहते हैं कि तुमको पता नहीं गधे की जून लगेगी। मुझे आज तक इस बात का समझ नहीं आया इसका क्या मतलब है। मैंने कहा जुलाई क्यों नहीं लग सकता गधे का, वाई जून? लेकिन तुझे गधे की जून लगेगी, इट डजंट इवन साउंड ग्रेट। व्हाट यू से?
3: I thought that like I started with a very bad joke and then Renuka said no, every time I will top it off, I will really top it off.
0: नहीं, मैं अभी सर्च कर रही हूँ कि गधे की जून की मीनिंग क्या है।
3: जून क्या क्या होती गधे की जून?
0: इट मीन्स द लाउस ऑफ अ डोंकी। इट इज अ हिंदी फ्रेज। फिगरेटिवली इट रिफर्स टू अ वेरी थिक स्किन्ड, ऑब्लिवियस और शेमलेसली स्टबर्न पर्सन हु इज अनअफेक्टेड बाय क्रिटिसिज्म, स्कोल्डिंग और डिस्कम्फर्ट। मतलब ढीठ, बेसिकली
3: जैसे जैसे आप बोल रहे थे वैसे वैसे चेहरे नहीं सामने आते जा रहे थे, लाइक साइमल्टेनियसली इट वाज हैपनिंग। नहीं
0: आ गए हैं बिल्कुल हम यहाँ पर और ग्लासी खड़का के ही रहेंगे। रेडियो मस्ती 24/7 पर वेलकमिंग द वीकेंड विद मस्ती मैडनेस इज रेणुका एंड कौन हो तुम? कूल।
4: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085 6577।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live. Keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: ख्यालों में हेलो गुड मॉर्निंग
2: और हमारा ये क्रेजी शो दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: भैया ख्यालों में नहीं असलियत में हो रहा है ये वाला शो यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर। आप हैं अंतारा और वेनुखा के साथ। कौन सा ख्याल, किसका ख्याल? कभी कभी मुझे ख्याल आता है
1: ख्यालों में हम लोग कितना सब कुछ सोच लेते हैं, ठीक है। एंड आई अक्सर टॉक अबाउट जोनिंग इन एंड जोनिंग आउट, जिसमें हम लोगों ने PhD हासिल कर रखी है, बड़ा वो होता है। बट देन रियलिस्टिकली उसको अप्लाई कर देना, 52-year-old की ये जो है क्रूज पैसेंजर, उसको शौक है क्रूजेस पे जाने का, ठीक है। बट अभी हाल ही में वो हो गई है बैन, क्यों? क्योंकि उन्होंने हर क्रूज पे जाकर अपने ख्यालों की दुनिया और अपने ख्यालों की फैमिली को भी जाकर, मतलब खुद तो जाती थी, अपनी ख्यालों वाली फैमिली को भी साथ में लेकर जाती थी। तो क्या हुआ कि इस क्रूज में जो पूल डेक होता है, तो पूरा का पूरा पूल डेक पर जितने भी वो सनबेथिंग वाले चेयर्स नहीं पड़े होते हैं, तो वो वहां पे 14 लाइफ साइज कार्डबोर्ड कटआउट्स वो एक एक चेयर पे उसने बिठा दिए हैं, ठीक है। एंड वो सारे मतलब दे आर फेक टूरिस्ट, किसी ने सन हैट पहन रखी है, एक बंदे ने मांगरीटा, दो एल्डरली पेरेंट्स हैं, एंड एक एक कार्डबोर्ड टॉडलर है वेयरिंग क्रॉक्स एंड एवरीथिंग। तो भाई वो कहते हैं, तो जब बाद में 3 घंटे बाद जब लोगों ने जाके कंप्लेन की और वहां पे डेक वाले आए, शिप वाले, कहते ये लोग ऐसे नहीं हुए तो क्या हुआ थे, ऑल आर इमोशनली प्रेजेंट ओवर हियर।
3: इमोशनली यही तो बात है, यही तो बात है, दिल को बहलाने के लिए गालिब। आंटी जी भी उठ के डांस करेंगी, वो भी ख्यालों में ऑन रेडियो मस्ती 24/7। अंतरा, तुम्हारे ख्याल में क्या है इस टाइम पर, बताओ मुझे ऑफ माइक।
1: कार्डबोर्ड में तो नहीं है
3: पक्का

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: कर्म के आगे हम किसी भी चीज को आने नहीं देंगे. हमारा कर्म ही हमारा भगवान है, हमारा कर्तव्य है. और अंतरा की आंखें बड़ी होती जा रही है इससे पहले कि बाहर आ जाएं अपने आई सॉकेट से. आई थिंक आई शुड टेल कौन सी कवर की बात हो रही है. गुड मॉर्निंग.
3: मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज भी होती है. मैं कह रही हूँ जब से रेणुकानंदन है ना वो हिंदी में इन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है, इनके जो जो आ रहे हैं मतलब इनकी जुबान से ऐसे ऐसे हिंदी हिंदी के शब्द ऐसे उचक उचक के बाहर आ रहे हैं.
2: देखो तुम बिल्कुल मेरा मजाक नहीं उड़ा सकती. पता है क्या होता है,
3: मैंने मजाक उड़ाया क्या? मैंने तो ऑनर भी आपकी कितनी तारीफ की.
2: जी जी. और पता है क्या, घर की मुर्गी दाल बराबर. एंड आई विल टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दैट. लेकिन पहले मैं ये खबर देना चाहती हूँ कर्म के बारे में, ठीक है, जो कि मैंने अभी भी कहा. चेन यिंग से कुछ सीखो, चेन यिंग से, ठीक है. वो एक लोकल न्यूज एंकर है चाइना में, ऐसी शक्ल मत बनाओ, बस सीखो उससे. तो क्या हुआ था 2013 में, ठीक है, वहां पर एक 7.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था उसके होम टाउन ऑफ यान में, ठीक है, चाइना में. अब जो चेन है उस टाइम क्या कर रही थी, वो अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी. ओके, शी वॉज प्रोसीडिंग विद द शादी. अब मैं फेरे तो नहीं कहूंगी बट हाँ, चाइना की शादी. और उसने पता है क्या किया, उसने ब्राइड के कपड़े पहने हुए थे, उसने माइक उठाया और वो सीधा डिजास्टर जोन पर पहुंच गई. वहां पर उसने इंटरव्यूज लिए सर्वाइवर्स के, रिपोर्ट किया लाइव फ्रॉम द सीन. जब उसने वो ब्यूटीफुल सी व्हाइट वेडिंग ड्रेस विद द वेल पहनी हुई थी, वेल को किया पीछे एंड उसके बाद मतलब सोचो इंटरनेशनली हर जगह उसकी जर्नलिस्टिक ट्रेडिशन की कसमें खाई जाती है. कसमें.
3: नाइस. इसका मतलब चैन की वजह से सबने चैन की सांस ली.
2: ओह क्या बात है, गंदे से गंदे ख्याल सुबह सुबह सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती पर मस्ती मैडनेस पर आ सकते हैं. चैन की वजह से चैन, क्या बात है, क्या बात. उफ, मैं तो घायल हूँ, घायल.

0: गुड मॉर्निंग है जी, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है। रात भर आप जो भी करेंगे करेंगे, फिलहाल तो दिन की बात कर लें क्या। यहाँ पर मस्ती मैडनेस,
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: आई थिंक ये सिर्फ ये फ्राइडे वाला शो है जहाँ पे हम ऐसे रैंडमली, मतलब अभी रात की बात करने का कोई सेंस बनता नहीं, लेकिन हम कुछ भी कह सकते हैं।
0: हेलो, हमारे अभी, अभी मैं रेफरेंस दे रही थी टू रात भर, जो गाना अभी अभी खत्म हुआ है। मतलब ऐसे मत करो
2: जी
0: यार।
2: जी
0: हाँ
2: जी जी अरे चलो, जैसे इसका कोई सेंस नहीं बना उतना ज्यादा, लेकिन इस बंदी के भी कहने का कोई सेंस नहीं बन रहा है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये जो है, अब कुछ कुछ क्या होता है ना, लोग बस बोलते हैं और उनके बोलने का स्टाइल ऐसा होता है कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ कह रहे हैं, एंड इट मैटर्स। ओके, कम्युनिकेशन के क्लासेस में ये लेसन में सिखाया जाता है कि हाउ यू से समथिंग एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ये जो बंदी है ये वर्जन है, ठीक है, एंड शी सेज दैट आई एम प्राउड टू बी अ वर्जन, एंड शी सेज दैट आई विल रिमेन अ वर्जन टिल आई डाई।
0: ओ अच्छा, दैट टाइप। हां,
2: बिकॉज़ नाउ द बिकॉज़ कम्स, बिकॉज़ आई वांट टू बी अ गुड एग्जांपल टू माय चिल्ड्रन।
0: है एक मिनट, गुड एग्जांपल टू हर चिल्ड्रन बाय रिमेनिंग अ वर्जन। वाकई ये गाना तो आ जाता ना, मैं पागल हो जाती हूँ। जाट के दिल के भीतर क्यों तू आग लगा मेरे, आई लव इट। तो क्या इसका क्या है, इसके पीछे साइंटिफिक नॉलेज क्या है?
2: अच्छा, वही है ना कि मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसने बोल दिया ये मानते हुए कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब इसको कौन बताएगा कि साइंस तो ऐसे काम करता नहीं है।
0: बट बेबी, that means logically she can still go surrogate or she can still have a test tube baby or whatever, right? Matlab she can still be a virgin, it's possible
2: to hai. Point to be noted, my lord, lekin mujhe lagta nahi hai she is going after that.
0: Aur uske bacche sunne wale bhi nahi hai, they don't know what she's missing. She doesn't know that for sure.
3: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: भाई मुझे तो ऐसा लगा कि इससे पहले कि जो 8 बजे काम शुरू करते हैं ना लोग, वो दफ्तर पहुंच जाएं और सीरियस हो जाएं, मतलब ये वाली खबर मैं जरूर सुना दूं, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। आप भी ध्यान से सुने अंतरा जी।
2: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो।
3: बिल्कुल ध्यान से सुनती हुई मैं और बाकी सब भी, मतलब ये एक ऐसा शो है आई थिंक सब ध्यान से सुनते हैं, मिस नहीं होना चाहिए कोई भी एक भी सेकेंड।
1: Well, उत्तर प्रदेश लेके जाएंगे, कानपुर नहीं जाएंगे इस टाइम पर, ये इमोशनल हो जाती है, तो मैं बस उत्तर प्रदेश तक जाऊंगी और वहां पर एक 24 साल की औरत जिसका नाम है रीना। ओके अब रीना अपने शादीशुदा जिंदगी से काफी दुखी थी, ठीक है, अरेंज मैरिज थी, ऑर्गेनाइज करी उसकी फैमिली ने, तो अब उसको लग रहा था यार कैसे भागूं कैसे जाऊं, और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, हर लवर फ्रॉम द सेम विलेज, राइट। अब बात ये हुई कि रीना जी का जो दिमाग है बड़ा क्रिएटिव था, शी शुड हैव बीन इन अ क्रिएटिव फील्ड। सो रात को वो सोई, ठीक है, और फिर सुबह उठी नहीं, तो लोगों ने देखा कि क्या है ये, क्या है, क्यों नहीं उठ रही है, ठीक है, घर वालों ने देखा, कंबल हटाया तो अंदर स्नेक स्किन 5 फुट का, ओके, मतलब है? और साथ में उसके कुछ सामान, तो बेसिकली टू शो कि वो रात को सांप बन गई, वो इच्छाधारी नागिन थी, वो सांप बन गई ताकि वो लोग ढूंढे भी नहीं उसको, ठीक है। अब असलियत में पुलिस आई, उसने कहा कोई इच्छाधारी नागिन नहीं होती, बकवास करो साइड पे, ठीक है, नाउ लेट्स टॉक बिजनेस। उन्होंने उसका फोन वोन ट्रैक किया, पता लगा कि वो एक्चुअली भाग गई थी विद हर लवर। ओके अब पहले तो गाँव के लोगों के बड़े दिमाग में गए, ओए उसकी लड़की तो इच्छाधारी नागिन थी, यू नो हाउ इट गेट्स, राइट। एंड देन उसके बाद में आंखें खुली उनकी, तो पता लगा कि ये तो कुछ और ही मूड में थी।
3: तो वो लोग उसके बाद में यही कह रहे होंगे ना, वो तो सच में नागिन निकली।
1: हाँ
3: सच में नागिन निकली।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behen aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: अजय डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
4: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
3: सुना।
4: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

0: आठ बजे के उस पार बिल्कुल पहुंचे हुए हैं हम यानी कि मैं और रेणुका, मैं अंतरा, मस्ती मैडनेस जहां पर चुप रहा
1: मस्ती मैडनेस जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल
2: खबरों के लिए बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं बेटे। दिस इज मस्ती मैडनेस, फ्राइडे है, वीकेंड का मूड बनता चला जा रहा है।
0: हाँ, सामने छुट्टी दिख रही हो ना रेणुका, सबका वीकेंड का मूड बना है। पहले मिड वीक छुट्टी, उसके बाद मंडे छुट्टी, मतलब ऐसे ही ऐसे चल रही है।
2: तो बड़े सारे लोग अंतरा दो दिन से बीमार भी चल रहे हैं, थर्सडे फ्राइडे।
0: वही ना, वही मैं कल यही कह रही थी कि मैंने कम फॉर ऑल दोस पीपल जो बीमार और एमसीआर लेके घूम रहे हैं। नहीं, बहुत बहुत ही ज्यादा तबियत खराब है इस टाइम पे। बट वेल, यहाँ पे जो है इस वाले के बात करते हैं जिसको सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं तो मतलब सीरियसली। सो हुआ कुछ ऐसा कि इंडिया की ही खबर है, एंड दिस गर्ल शी ऑर्डर्ड एक ये जो डिलीवरी एप्स होते हैं ना, उसमें से उसने ऑर्डर किया एक वाइब्रेटर। ठीक है, सो देयर इज सर्टेन privacy included when you order these kind of things. Of you're not supposed to, जो भी deliver कर रहा है उसका क्या लेना देना भाई, तू अपना packet दे और चलता बन।
2: Exactly.
0: This guy apparently opened the packet, so he got to know that she has ordered a vibrator. So this guy tells her कि मैडम आप इसको क्यों यूज कर रहे हो, अगर आपको इसको यूज करने की जरूरत है उसकी जगह मुझे यूज कर लो।
2: ओ बेटे की
3: लग दिल हार दिया, जिसे हिसाब
2: नॉटी बन रहा था उसके साथ।
0: हाँ जी,
2: हाँ कि मैडम आप वाइब्रेटर क्यों मंगवा रहे हो, मुझे यूज कर लो। अच्छा, कभी जब खाना मंगवाया तो इन लोगों ने कभी नहीं बोला ना खाना क्यों मंगवा रहे हो, हम बना देते हैं।
0: तो वो थोड़ी ना बोलेंगे,
2: ये भी तो बोले जब सर्विस गोज एन एक्स्ट्रा माइल तो हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करो ना, फिर सिर्फ वाइब्रेटर के सब्स्टिट्यूट क्यों बनना चाहते हो तुम।
0: तो मतलब कि क्या क्या होगा, मतलब ऐसी कैसे, मतलब क्या ये सोच को लेके कहां तक जाओगे तुम, ये बता दो। और वो भी आज के जमाने में ना, व्हेन थिंग्स आर रियली चेंजिंग।
2: रियली डिस्गस्टिंग इज द वर्ड। गुड मॉर्निंग
4: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us

0: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: वो कहते हैं ना कि सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, जब तक तुम देख ना लो तब तक बिल्कुल विश्वास मत करो। गुड मॉर्निंग, दिस इज मस्ती मैडनेस। अगर आप हमारी कोई भी खबर देखना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं 9151893 पर। मत मानो जब तक तुम हमें चैलेंज ना करो।
2: मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: Are you sure you wanted to say that? Are you? Just asking. Good morning.
1: नहीं, पॉइंट सिर्फ ये है कि भाई हम जो भी बताते हैं वो सब रियल होती है, यू नो, वी डोंट मेक अप दिस न्यूज, दैट्स द पॉइंट। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको कोई ये कहे कि आपकी 4 मिलियन की लॉटरी लगी है तो आप शॉपिंग नहीं करने पहुंच जाते, सबसे पहले आप जाके उसको रिसीव करते हैं, राइट? व्हाट वुड यू डू अगर तेरी 4 मिलियन की लॉटरी कोई कहे, हे, जो तूने उस दिन टिकट खरीदी, यही है, तू जीत गई, हाँ, तो तू क्या शॉपिंग करने पहुंच जाएगी पहले, या तू पहले
3: लेना तो पड़ेगा ना,
1: समझदारी
3: करने के लिए।
1: अब एक सिंगापुर की लड़की ने क्या किया था कि वो इतनी खुश हो गई जब उसको किसी ने कहा कि भाई वो 4 मिलियन की लॉटरी जीती है, तो उसने अपनी जो करंट सेविंग्स थी सारे गिफ्ट्स और सेलिब्रेशंस में मतलब जाके कर दी, सारी की सारी खत्म कर दी। उसके बाद वो जब लेने गई तो उसको रियलाइज हुआ दैट शी हैड मिसरेड द नंबर एंड द एक्चुअल विनिंग वाज जस्ट $40। सो बहुत ही बड़ा धोखा, इसे कहते हैं आंखों का धोखा और नसीब का धोखा। एंड देन ऑफ कोर्स दैट टर्न्ड आउट टू बी द मोस्ट लाइफ चेंजिंग मोमेंट, राइट? बिकॉज होप, हेस्ट, रियलिटी, जल्दी जल्दी। तो कहते हैं ना, जल्दी जो भी करते हैं वो क्या होता है, क्या कहते हैं हिंदी में, जल्दी का
3: काम शैतान का होता है, पर सब्र का फल भी मीठा होता है, ये भी कहते हैं।
1: ये भी बात है।
3: कौन सी माने, विच वन?
1: सब्र तो इसने काफी किया था, मीठा नहीं हुआ फिर भी मुझे।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

0: गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. जी हाँ बिल्कुल, रेडियो मसी 24/7 पर. लाल घाघरा पहनकर तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब ठीक ठाक से कपड़े पहनकर पहुंचे हुए हैं मैं और अंतारा. इट्स मसी मैडनेस एंड ऑफ कोर्स आपका फेवरेट शो है
1: क्रेजी दुनिया क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो.
2: हाँ जी हाँ जी. तो ये सूचना जनहित में जारी है कि जब आपको कोई चीज नहीं पता हो और आप उसके बारे में क्यूरियस हो तो आप प्रॉपर रिसर्च कर लो. हाँ, अपना दिमाग बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम्स.
0: अग्री अग्री अग्री. तो क्या हुआ इस केस में?
2: अहमदाबाद चलते हैं. अहमदाबाद में हमारे इट्स अ ट्रेजिक केस ओके व्हिच हैपेंड. हमारे जो भाई है तो अब क्या था कि ये जो है जिस मोहतरमा के साथ करने पहुंचे जो उनको करना था जो करते हैं जो बहुत ही प्लेजरेबल होता है तो वो करने के लिए अब वो ढूंढ रहे कॉन्डम. अब उन्हें मिला नहीं कॉन्डम तो बट उनको था कि भाई प्रोटेक्शन तो बहुत ज्यादा जरूरी है. मैं तो बिना कॉन्डम के तो और करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो ये चक्कर में भाई ने क्या किया, ही टुक सुपर ग्लू.
0: सुपर
2: ग्लू लेकर टिप पे लगा दिया ताकि वो कॉन्डम का काम हो,
0: ताकि सामान बाहर नहीं आए.
2: हाँ
0: तो
2: मतलब टिप पे लगा के उसको ब्लॉक कर दिया कि वहां से सामान नहीं निकले.
0: तो फिर ओके, आई हैव लोड्स ऑफ क्वेश्चंस राइट नाउ ऑब्वियसली.
2: मी टू. But me too. I also have loads of questions. But then, poor thing, he's no more.
0: Huh? Obviously, he's no more.
2: Yeah.
0: Because obviously, the body could not take the okay. But yeah. Super glue, say, oh my god, this is scary, guys. I think we need to understand the basic difference between what a protection does versus what super glue does. मतलब. बहुत दुख हुआ मुझे सुन के कि वो क्या क्या करते हुए निकल पड़े और बिना अपनी सर्वोच्च जिसे कहते हैं.
2: आई नो, मतलब सुपर ग्लू कहीं पे भी नहीं लगा सकते. जस्ट
0: जी उनको जन्नत में
2: खुशियां
0: मिले. जी हाँ बिल्कुल गलत बात.
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: 40% off. 40% joy Alukas.
1: 40% off? Oh my god! Let's go! Let's go!
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ.
4: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ.
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां.
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग. The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: हाँ तो भाई इंडस्ट्रियल जो ग्लू होती है उसको गलत जगहों पे, उसको शरीर के किसी अंग पे इस्तेमाल ना करें, हमारी पिछली न्यूज उस बारे में थी। लेकिन ये वाली न्यूज ऐसी है कि जब आप किसी से विवाह करने पहुंचते हैं, जब आप शादी करने पहुंचते हैं किसी के साथ में, तो आपका प्यार कितने दिन तक लास्ट करता है, मतलब ये बताएं।
2: मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस।
3: बट बड़े सारे इसमें तो मतलब बहुत सारी चीजों पर ये डिपेंड करता है कि आप कितना लास्ट कराना चाहते हो।
1: जी बताएं कितना लास्ट, मतलब क्या लास्ट प्यार आपकी आपकी क्या मतलब, क्या हवस, क्या मतलब शादी में प्यार कितने सालों तक रहता है ऑन एन एवरेज अकॉर्डिंग टू यू।
3: Okay, very long person to ask, but then
1: okay, I'm not going to go there. Now, the thing is, मैं बात कर रही हूँ Erica Labrie की। अब ये जो Erica है ना, इसने 2007 में Eiffel Tower से शादी करी थी, ठीक है?
3: Okay.
1: तो अब क्या हुआ कि भाई उसको प्यार हो गया था तो हो गया था, इमोशनल रोमांटिक व्हाटएवर, शी लव्स दोज इंटीमेट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जिससे कि उसको प्यार हो जाता है। अब 15 साल जैसे उसकी शादी को बीते, उसने बोला कि अब मेरे को प्यार नहीं है इसके साथ, मतलब खत्म हो गया मेरा प्यार, ठीक है? तो उससे पूछा अब क्या करोगी, तो उसने कहा मुझे Eiffel Tower से डिवोर्स चाहिए क्योंकि मुझे अब एक वुडन फेंस से प्यार हो गया है, तो मैं अब उस कनेक्शन को काफी डीप, मीनिंगफुल, परफेक्ट समझती हूँ और बहुत वो हाईली अपीलिंग है, एंड दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू गो गेट मैरिड टू दिस फेंस नाउ। नशा तो कहीं से भी आ सकता है ना प्यार में,
3: मैं बोलूं जो मेरे दिमाग में आ रहा है।
1: नहीं बिल्कुल नहीं, तुम शेप्स की बात नहीं करोगी, बिल्कुल नहीं करोगी, और हम आगे बढ़ेंगे। हाउ डू आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, ओ माय गॉड।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
2: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space, Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: मतलब आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि कोर्ट बड़ा बिजी चल रहा है, हर तरफ से केसेस ही केसेस आ रहे हैं इनके पास।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो।
2: भाई कुछ ऐसी चीजें जिंदगी में जो कभी खत्म नहीं होंगी, जैसे कि हेल्थ केयर, जैसे कि एजुकेशन और जैसे कि कोर्ट केसेस। वाह, इन्हीं कमाल के शब्दों के साथ में आगे आपकी खबर अंतरराष्ट्रीय।
0: फाजिल दोस्त, 2022 के केस की तरफ आपका थोड़ा सा ध्यान चाहेंगी।
2: जी बिल्कुल।
0: तो इसमें कुछ ऐसा हुआ कि कभी ये जो है, कई सारे फैमिलीज, स्पेशली आई कैन टॉक अबाउट इंडियन फैमिलीज, की ऐसा होता है कि जो इन-लॉज होते हैं वो कहते हैं कि भाई कब दे रहे हो बच्चा, कब दे रहे हो। यहाँ पे घर वाले मतलब अपने बेटे के पेरेंट्स कह रहे हैं कि बच्चा दे दो, बच्चा कब कर रहे हो। तो कुछ ऐसा हुआ कि एक रिटायर्ड कपल, उत्तराखंड इंडिया की ये बात है, ठीक है, ये इन्होंने सू कर दिया अपने बेटे बहू को।
2: ओके, क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहे थे।
0: $1,000 का सू अमाउंट है, क्योंकि 6 साल हो गए इनका उनकी शादी को, बच्चा नहीं दिया इनको।
2: तो अगर 3,000
0: उसके बाद उनकी उनकी जो पॉइंट्स टू बी नोटेड मिलोर्ड थे, वो थे कि भाई हमने अपनी लाइफ की सेविंग्स लगा दी इस ओनली सन पे, इसके पायलट ट्रेनिंग के पैसे दिए, इसकी शादी कराई, इसकी कार दिलाई, इसका हनीमून फंड किया। तो मतलब ये तो मेंटल हरासमेंट हुआ ना, हम बच्चा मांग रहे, दे दो अब बच्चा।
2: बिल्कुल बिल्कुल हरासमेंट हुआ। नहीं, तुमने उसको ठीक से वो काम करना नहीं सिखाया जिसकी वजह से बच्चा जल्दी हो जाता, वो भी सिखा देते। मतलब तुमने ढंग से उसको क्लासेस दी नहीं, इसीलिए नहीं हो रहा। तुम्हें क्या लगता है?
0: इतना जब घुसी गए हो तो थोड़ा और भी, मतलब पूरा ही घुस के सभी कुछ बता ही दो, फिर
2: इनको बता दो कैसे करना है, क्या करना है, क्या पैदा करना है। मतलब आई डू नॉट अंडरस्टैंड वन थिंग, और मेरा लॉजिक बड़ा सिंपल है, जैसे शादी हो इंसान को रहना चाहिए अलग, दैट इज द बेसिक थिंग। ठीक है, प्यार बना रहेगा और कई केसेस में जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं शायद जिंदा भी रहेंगे। क्यों भाई, ठीक बात है ना?
0: अग्री
3: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.

0: sandwich dishes for just $25 plus plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
1: गाना चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151-8963 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: ओ देखो हो गया फेयर, खेल हो गया शुरू।

0: आइए आइए, हमारा तीसरा घंटा। ओ गॉड, आप जितना भी चाहें ना, हम नहीं बढ़ा सकते 3 घंटे ज्यादा ये शो। सो हमें ये बात लिखना बंद करो प्लीज। गुड मॉर्निंग।
1: मस्ती मैडनेस, जहाँ न्यूज भी होती है गैस।
2: हम पे भी थोड़ा तरस खा लो, मतलब अपने बारे में सिर्फ मत सोचते रहो।
0: अरे मेरा तो जिंदगी से, जीवन से, इस दुनिया से विश्वास उठ जाएगा अगर मैं सिर्फ यही वाली खबरें पढ़ती रहूंगी पूरे दिन। सीरियसली आई टेल यू, अभी लेटेस्ट देखो क्या है। अगली खबर तो मतलब बदबूदार खबर है, आप सुने जरा। ब्रिटेन का पहला साइबर फार्ट क्राइम। ओके, साइबर फार्ट क्राइम। ओके, उसमें एक 25 साल की लड़की है वेल्स से, एंड उसने शी प्लीडेड गिल्टी टू हरासमेंट आफ्टर सेंडिंग एक्सप्लिसिट फार्टिंग वीडियोस एंड सेल्फीज अपने एक्स पार्टनर, अपने बॉयफ्रेंड के एक्स पार्टनर जो है लड़की उसको। अब बताओ, इतना भी क्या चल रहा है तुम्हारा कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को तो नहीं भेज रहे हो कुछ भी, उसको नहीं पनिश कर रहे हो, लेकिन तुम उसकी जो नई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, उसको तुम भेजे चले जा रहे हो। अब बताओ ये क्या है, मतलब मल्टीपल वीडियोस 10 दिन में व्हाट्सएप पे अपना स्मार्टफोन जो है ना उसका कैमरा अपने बम के नीचे रख के, एंड शी इज रिकॉर्डिंग हर सेल्फ पासिंग गैस वाइल स्मोकिंग एट द लेंस। मतलब तुम योगा का ये आसन सोचो कि क्या चल रहा है इसमें, ठीक है ना?
2: वेरी टिपिकल।
0: हाँ, तो पुलिस ने वार्निंग दी कि भाई बंद करो, तो फिर उसने और भी भेजे। न्यू ईयर्स डे पे भी उसको वैसे ही विश किया कि ये ले तेरे लिए एक और वीडियो। ये कौन सा तरीका है?
2: इसको जस्ट लाइक कोई जाके इसको बताना चाहेगा कि वो जो पास कर रही है तो वो खुशबू वहां तक पहुंच नहीं रही है, बाय द वे, जस्ट लेटिंग
0: उससे भी बड़ी बात तो ये लगी कि पनिशमेंट क्या थी, 100 pounds इन कॉम्पेंसेशन टू द विक्टिम। सोच उसका मेंटल, सोच हालत क्या होगी ये सब देख के, लेकिन उसको 100 pounds मिले और 200 pounds कोर्ट के कॉस्ट में। मतलब दैट इज इट। इसका मतलब है कि एनीबडी कैन सेंड ऑल दीज वीडियोस एंड गेट अवे विद जस्ट 300 pounds। इसी बात पर अंतरा की रिक्वेस्ट पे उड़ी उड़ी जाए गाना।
2: यहाँ से उड़ते हुए आपके पास भी आ सकती है रेणुका।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: कंप्यूटर पे।
1: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
2: Check it out.
3: भाई क्या क्या चीजें हो रही है दुनिया में। दीज खबर्स नेवर स्टॉप अमेजिंग मी। या
4: मस्ती मैडनेस जहां न्यूज भी होती है
5: मस्ती मैडनेस है। रेणुका है, अंतरा है और अजीब अजीब सी खबरें हैं। जी हाँ बिल्कुल, अब 10 बजे तक हम आपके साथ हैं। अगर आपको एनकोर सुनना है तो अंतरा कल के दिन में सुन लेंगे ये। हाँ
3: बिल्कुल,
5: कब
3: शाम के टाइम में आपको इसको ऑनकोर सुनाई देगा और मैं आपको ले जाना चाहती हूँ इंडोनेशिया।
5: चलो
3: अब देखो, मुझे पता नहीं इनसे कोई ये सवाल पूछेगा नहीं पूछेगा, बट वेल हमारे ये जो भाई साहब हैं इन्होंने ऑनलाइन किसी से मिले, इनको प्यार हुआ, इन्होंने बिल्कुल प्रॉपर उसमें ट्रेडिशनल उसमें वेडिंग सेरेमनी में शादी भी की। 2 हफ्ते हो गए ठीक है शादी को। 2 हफ्ते के बाद ही गॉट टू नो कि जिससे शादी की कि वो तो औरत है ही नहीं।
5: 2 हफ्ते के बाद
3: वो तो बंदा निकला। तो मेरा सबसे पहला सवाल भेजे जो आपने अभी कहा कि 2 हफ्ते के बाद तुझे पता चला कि मतलब क्या इसमें
5: ठीक है, हो भी सकता है भाई। प्यार प्यार सिर्फ शरीर से तो नहीं होता ना, आत्मा से होता है। वो आत्मा से करने में लगे हुए थे ना तब तक। इट्स ओके, इट्स अंडरस्टैंडेबल अंतरा। डोंट, हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता है ठीक है, कि पिल पड़े बस। मैं भाग रही हूँ, मुझे
3: भाई रियलिस्टिक होने को आजकल पिल पड़ना बोलते हैं। यहाँ पे हमारे हमारे फाजुल दोस्त इज स्टैंडिंग विद कि तुम समझो ये आत्मा का मिलन है, उसने आत्मा से प्यार नहीं किया होगा। भाई को पता ही नहीं चला 12 दिन तक बंदा है बंदी है।
5: मतलब इतनी भी आत्मा में क्या घुस गया था वो, थोड़ा बहुत शरीर चेकआउट तो कर लेता।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: कभी कभी हम जिंदगी में ऐसे मोर्चे लेके आगे पहुंच जाते हैं कि हमें उसके बाद घबराहट खुद में होने लगती है, बेटा मुझे कोई मार तो नहीं देगा जो मैंने किया हरकत। मैं ये बात ये आप भी थी, जी हाँ अपनी बात बता रही हूँ इस टाइम पर रेडियो मसी 24/7 पर। मुझे ऐवें थोड़े कहते हैं झांसी की रानी।
3: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो।
4: मैं रेणुका कह रही थी शाम को मेरे से चेक कर लेना एक बार कि मैं घर सही सलामत पहुंच गई कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे चल, मैं बताती हूँ, यहाँ पे चल रहा है हमारे फ्लोर पे काम, ठीक है, बिल्डिंग पे ऑफिस के, और क्योंकि इतना शोर होता है ना, ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स जब हम लोग यहाँ पे शो वो कर रहे होते हैं। तो रेणुका ने उनको बोला कि भाई ये एक स्टूडियो है, आपको हम बताना चाहते हैं आप कि यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, एंड स्पेशली जब शोज वगैरह हम लोग कर रहे होते हैं तो आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। देखो अब एक बात है रेणुका की, आप या तो उनके साथ कोऑपरेट कर लो, ठीक है, फिर हाँ बोल के अगर आपने अपनी शांत पंती दिखाने की कोशिश की फिर तो फिर आपने रेणुका का कहर देखना है, ठीक है, तो वही किया, ये शाणे बनने चले थे, ठीक है, इन्होंने इनको रूल समझाने की कोशिश की, तो इन्होंने कहा अब तो हम बाय द बुक ही जाएंगे, हम रूल ही फॉलो करेंगे।
2: बिल्कुल रूल्स फॉलो करने हैं, आई एम ऑल फॉर रूल्स, लेकिन फिर रूल्स फॉलो करो। अगर आप दिन में शोर नहीं मचा सकते हैं तो नहीं मचा सकते हैं। अब इस टाइम अगर सुबह के 9:30 हो रहे हैं, मतलब होने वाले हैं, तो सीधी सी बात है तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, तुम आके ड्रिलिंग नहीं शुरू कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये ऑफिस टाइम है बस। लेकिन मुझे बस यही खतरा है कि मैं अगर शाम को घर ना पहुंची तो आप सब देख लेना कि भाई मैं गुंडों से पिटवाई गई हूँ।
5: तेरी चोटी है परांदा तेरा लाल,
2: क्योंकि मैंने काफी एस्केलेट कर दिया ये बात,
5: परांदा तेरा लाल वो रूप दियो,
2: और सुबह से बिल्कुल शांति है यहाँ पे, घबराहट तो मुझे उस बात की हो रही है। रेडियो मस्ती 24/7, जी हाँ फुल ऑन मस्ती यहाँ पर ऑन मस्ती मैडनेस। जस्ट फ्यू मिनट्स लेफ्ट एंड 2-3 खबरें रह गई हैं, सुने बिना मत जाना, आफ्टर ऑल आपको भी तो गॉसिप के लिए कोई खबरें चाहिए वीकेंड पे, नहीं? गुड मॉर्निंग।

0: नमस्कार नमस्कार। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर सुबह 7 बजे से जमे हुए हैं मैं और अंतरा, और इस समय हो रहे हैं 9:33:18।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें, और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती।
0: मौजा ही मौजा चल रही हैं। बताइए अंतरा जी, आपकी अगली खबर आखिर क्या है?
2: 33 Well, भाई एक और वियर्ड खबर और एक और वियर्ड सी लड़की जो है। अब क्या है कि लोग होते हैं पैशनेट होते हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं, प्यार होता है तो फिर वो कहते हैं कि हम तुम्हारा नाम गुदवाएंगे अपने शरीर पे, हम टैटू बुलाते हैं। तो भाई कई सारे लोगों ने कई क्रिएटिव मेजर्स ले रखे हैं इस तरह से कि हाथ में कर लेते हैं, एंड दे फाइंड प्लेसेस। बट नाउ दिस बंदी, तो उसने अपने पहले बॉयफ्रेंड का नाम जो है ना वो अपने सर पे लिखाया हुआ था, टैटू कराया
0: सर पे।
2: हाँ, ये लाइक फोरहेड।
0: व्हाई वुड एनीबॉडी डू दैट?
2: शी डिड। ओके, बट द प्रॉब्लम वहां पे नहीं है, प्रॉब्लम ये हुआ कि उससे उसका ब्रेकअप हो गया। So, उसने अपने टैटू आर्टिस्ट को बोला कि अभी इसमें ना एक स्ट्राइक मार दो, मतलब कट कट, ये हो गया, इसका चैप्टर क्लोज हो गया है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बॉयफ्रेंड बना तो उसने कहा कि देखो मेरी पैशन तो उतनी है, सेम टू सेम तुम्हारे लिए भी, तो उसी के बगल में उसका नाम लिखाया। फिर उससे भी ब्रेकअप हो गया, तो उधर भी कट मरवा दिया कि अब इसका भी काम हो गया। तो ये जो है कि जब जब अभी तो तीसरा नाम लिखा हुआ है, उस पर कट नहीं आया अभी तक, तो अब वो चेहरे पे चीक पे आ चुका है, एंड आई डोंट नो वेयर इट इज गोइंग इसके बाद।
0: यार मैं कहती हूँ ना, पहली बार अगर आपके साथ ऐसा हो तो वो आपकी गलती नहीं होती, लेकिन अगर दूसरी बार हो तीसरी बार हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होता। Maybe she enjoys all that. है ना, हो सकता है ना।
2: हम ना, मुझे ऐसा लगता है रेनू का, पता नहीं आपको फील होता है कि नहीं होता है, और फॉर आवर लिसनर्स आल्सो, कि हम दोनों ना ये शो करते करते एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं अपनी पर्सपेक्टिव के उसमें, कि हम एक्चुअली वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज पीपल।
0: हाँ, ये बड़ी गलत बात हो गई है।
2: है ना, कुछ तो उसका रीजन रहा ही होगा।
0: अब हम रैशनलाइज करने लग गए हैं।
2: मजा आ ही रहा होगा।
0: ओह नो, हम तो मतलब रैशनलाइज कर रहे हैं इनका बिहेवियर। हमें भी तो ऐसा कुछ नहीं हो गया। ओके, दैट्स स्केरी।

0: अच्छा भाई, अब हम जा रहे हैं, लेकिन अंतरा जी, मेरा प्लान इस वीकेंड का है कि मुझे डेफिनेटली जाके कुछ सोना, कितना सोना है, खरीदना है।
1: दुनिया क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
0: एब्सोल्युटली, बिल्कुल, और वो भी जॉय लुकास में 40% ऑफ मेकिंग चार्जेस। आई एम नॉट किडिंग, इट इज जस्ट एन अमेजिंग ऑफर, आज तक नहीं हुआ है, राइट? व्हाट डू यू से?
2: It's nice, but मेरे तो plans अलग है bro.
0: तू कहाँ जा रही है?
2: Because already मेरा already reservation हो रखा है. शाही महारानी जाएंगे, इतने दिन से promote कर रहे हैं यार, and it's such a big thing, right? शाही महारानी has always been a part of हमारी journey, and अब जब 25 साल उनके पूरे हो रहे हैं, and you know it's so special. तो बनता तो है, मे बी नॉट टू रीलिव बट ऑल्सो टू मेक न्यू मेमोरीज ओवर देयर।
0: बनता तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। 25 years दे आर कंप्लीटिंग एट रैफल सिटी, ऑफकोर्स वो उससे भी कहीं पुराने हैं, लेकिन 25 साल, और उसमें वो जो 6 dishes दे रहे हैं ना यार, वो $25 की, आई थिंक वो ऑफर बिल्कुल मिस करने लायक नहीं है। यू राइट, सो आई कैन डू, आई कैन गो एंड बाय सम सोना, कितना सोना है, फॉलोड बाय लंच और डिनर एट शाही महारानी। हाउ इज दैट?
2: आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मेरे साथ नहीं जाना ना, तब ठीक है।
0: ना, तेरे साथ नहीं जाना, बिकॉज जब मैं शाही महारानी जाती हूँ ना, उस टाइम पर मैं किसी के साथ नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि वहां जाके मैं जिस तरह से टूट पड़ती हूँ खाने पे, ओनली आई नो।
3: अंटे,
0: व्हाट अ सॉन्ग। जी हाँ, यहाँ पर
2: साथ में भी टूट पड़ सकते हैं, वो कहना है, आई विल ट्रीट यू विद द पापड़ी चाट।
0: ठीक है, डन है। चलिए, तो आप भी शाही महारानी जा सकते हैं, ऑफ कोर्स फॉर द 25 ईयर सेलिब्रेशन, एंड डोंट फॉरगेट 40% ऑफ मेकिंग चार्जेस फ्रॉम जोया लुकास। बोथ दीज ऑफर्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 एंड फॉर आवर लिसनर्स। फिलहाल के लिए बाय बाय, अब मिलते हैं, और कहाँ मिलेंगे? जी हाँ, मैं सोच रही हूँ, सपने में मिलती है।
2: हकीकत में रेणुका मिलेंगी। केड़ पास जाइए सजड़ा करते हुए।
0: बाय द वे अंतरा जी, मैंने सुना था,
2: आई गॉट ऑल द न्यूज़,
0: जी नहीं, मैंने ये भी सुना था कि आपके शो पे, वन ऑफ द शोज, किसी ने रिक्वेस्ट किया था केड़े पास जाइए सजना चला दीजिए। सो यू सी,
2: मैंने चलाया भी था।
0: इट इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड सॉन्ग ऑफ द वीक एज वेल, सो इट डिजर्व्स ऑल द लव दिस इवनिंग। Stay tuned to Bollywood Top Charts. जी हाँ, मैं 5 बजे मिलती हूँ। Bye.
2: Bye.

0: जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
2: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
1: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, that too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड, मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: The best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.
3: Hua musafir,

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.
1: आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूँ, मोहब्बत की दास्तान।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। Mosti Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week, full on Renuka style. Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
2: The perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends, only on Radio Musty 24/7 Live.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: अपना फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक चक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में रहो।
2: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें। समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, मस्ती 90s mixtape with आपकी 90s वाली अंतरा, Thursdays 11 AM onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
1: रात अकेली है, मैं रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊँ, हूँ खुद से जुदा।

चुनर मोरी मैली देव।

निजामुद्दीन आलिया, निजामुद्दीन आलिया, निजामुद्दीन आलिया, जग उजियारो, जगत उजियारो, जग उजियारो, हाँ जग उजियारो, साईं जग उजियारो, जगत उजियारो, जहाँ देखूं मोरे संग।

दान धन भागल उनके मोरे सजनी, धन धन भाग दान धन भाग उनके मोरे सजनी, जिन ऐसो सुंदर प्रीतम पायो खेलो रे चिश्तियो होरी।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: मुंबई।

0: Thank you. Come, please.
1: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
2: अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी की सालगिरह पर मैं और मेरे साथी आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, और जिस शौक से आप आजादी का जश्न मनाने यहां आए हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात यौम आजादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसा अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दो राह भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा ये वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में ये हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा ये हार पहनाएंगे, या आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।

रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।

ची पाखी जुमे रात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है। कोकला ची पाखी जुमे रात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है। कोकला ची पाखी जुमे रात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, रेडियो

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh.

0: करना चाहिए? आप बोलो हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉइस आपकी चॉइस।
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: Perfect recipe for you to unwind. Musti Weekends only on Radio Musti 24/7 Live.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
0: चेक इट आउट
3: Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on Radio Masti 24/7 live.